0: at Gow, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gow Express on Facebook.
1: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है. कोट कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम व तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है. अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे. कोट UK ऑफिस 03001233774 core.org.uk.
2: Did you know Sarah Joseph, a Muslim convert, was the founder of Britain's only Muslim lifestyle magazine, Emel Magazine?
3: From the studios of Inspire FM, the time is now 8:30.

जमा करके रख लेते हैं तो ये भी दुरुस्त नहीं। वल्लदीना और वो लोग, युमिनूना जो ईमान लाते हैं, बिमा उन्ज़िला इलैका जो आपकी तरफ उतारा गया। आपसे मुराद कौन है यहाँ? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या उतारा गया? कुरान और कुरान के अलावा क्या कुछ और भी उतारा गया था? वही की दो शक्लें थी, एक तो कुरान के अल्फाज और दूसरे हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में। यानी बाज़ोकात कोई मसला जब पेश आता था तो कुरान की आयत नहीं उतरती थी, बल्कि आपके दिल में उसके बारे में ख्याल डाला जाता था कि आप ऐसा कर लें, तो वो ख्वाब की शक्ल में या इल्हाम की शक्ल में आपके कल्ब मुबारक पर वो बात डाल दी जाती। मसलन दूसरे पारे में आप पढ़ेंगे कि किबले का रुख तब्दील करने का हुक्म दिया गया। उससे पहले जब मक्का से मदीना में मुसलमान आए तो हुक्म दिया गया था कि आप बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करें, लेकिन कुरान पाक में कोई आयत मौजूद नहीं है। एक मुसलमान 16-17 महीने तक दूसरी तरफ रुख करते रहे, तो ये कहाँ से पता चला और किसने कहा और क्यों किया? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मर्जी से ही मदीना आकर क़िबला दूसरी तरफ कर लिया? नहीं, आपको वही के जरिए बताया गया था, लेकिन वो वही कुरान मजीद में नहीं लिखी हुई। इसी तरह की और बहुत सी मिसालें हैं कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब के जरिए या इल्हाम के जरिए कुछ बातें बताई गई, लेकिन वो कुरान की शक्ल में नहीं थी। या इसी तरह कुरान की जो वजाहत आप करते थे अमली शक्ल, मसलन नमाज का हुक्म मिलता है कुरान मजीद में, लेकिन तफसीलात इस तरह नहीं मिलती कि आप खड़े होकर कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, और हाथ कितने उठाएं, और रुकू में क्या पढ़ें, और सजदे में क्या पढ़ें, और आप अत्तहियात पढ़ें। क्या अत्तहियात कुरान मजीद में कहीं लिखा हुआ? नहीं लिखा हुआ। ये सारी बातें हमको कहाँ से पता चली? हदीस से पता चली। तो मा उन जिला जो है ये सिर्फ कुरान नहीं है, मा उन जिला में हदीस भी शामिल है। तो मुत्तकी कौन होता है? जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसा ईमान रखे कि जो कुछ उन्होंने हमें कुरान या गैर कुरान की शक्ल में दिया उसको वो मान जाए। वह मा उन जिला मिन कबल का, और जो आपसे पहले नाजिल किया गया। पहले से मुराद क्या चीजें हैं? जो पिछले पैगंबरों पर उतरा, जैसे तौरात, जबूर, इंजील और सहीफ़ है जो मुख्तलिफ पैगंबरों पर उतरे, जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफ़ों का जिक्र भी कुरान मजीद में मौजूद है, सुहफ़ इब्राहीम व मूसा। व बिल आखिरती हुम यूकिनून, और आखिरत पर वो यकीन रखते हैं। आखिरत क्या चीज़ है? आखिरत का लफ्जी माना क्या है? आखिर में आने वाली, उसको क्यों कहा गया आखिर में आने वाली? मुराद इससे क़यामत का दिन है, लेकिन उसको आखिरी दिन क्यों कहा गया? ये हर शख्स की दुनिया की ज़िंदगी के आखिर में आएगी, क्योंकि आखिरत एक तो वो क़यामत का दिन है ख़ास, लेकिन हर शख्स की क़यामत उसी दिन आ जाती है जिस दिन उसकी मौत वाक़ई होती। हम यूकिनून, वो यकीन रखते हैं। यकीन क्या चीज़ होती है? फ्रॉम बिलीव, इल्म का कौन सा दर्जा होता है? आखिरी दर्जा। यानी किसी चीज़ के इल्म का और यकीन का पक्का और आखिरी दर्जा, कि उसके बाद कोई और डिग्री नहीं है यकीन की। आखिरत पर वो यकीन रखते हैं। इसका तकवा से क्या ताल्लुक है? आखिरत का यकीन ही ऐसी चीज़ है जिस पर इंसान का तकवा बढ़ता और घटता है। यानी ये सारी चीज़ें इंसान के तकवा में इजाफे का सबब होती हैं, लेकिन ख़ास तौर पर आखिरत पर यकीन, क्योंकि जब इंसान को मौत याद आती है तो ही जिंदगी की हकीकत कम नजर आती, तभी इंसान फिर कुछ करना चाहता है। और अगर इंसान को मरने के बाद की जिंदगी के बारे में कोई फिक्र ही ना हो तो भला वो क्यों अल्लाह की बात माने? थोड़ी देर के लिए सोचिए, अगर हम आखिरत पर यकीन न रखते तो क्या हमें कुरान पढ़ने की जरूरत थी, हिदायत की जरूरत थी, कुछ सीखने की, कुछ जानने की, कुछ करने की? नहीं, हम दीन की तरफ नहीं आते। ये आखिरत पर यकीन है जो हमारे दिल में डर पैदा करता है, और फिर हम गुनाहों से बचना चाहते हैं। जब गुनाहों से बचना चाहते हैं तो फिर हमें हिदायत की, सही रास्ते की ज़रूरत महसूस होती है। फिर जब सही रास्ते की ज़रूरत महसूस होती है तो हम किताब को पढ़ना चाहते हैं, हिदायत चाहते हैं। तो जब तक आखिरत पर यकीन ना हो उस वक्त तक किताब से हिदायत नहीं मिल सकती। हुदल लिल मुत्तकीन कौन? व बिल आखिरती हुम यूकिनून, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, यही लोग अपने रब की तरफ से आई हुई हिदायत पर हैं। कौन? ये मुत्तकीन। इन मुत्तकीन को हिदायत मिल जाएगी। व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और यही लोग फलाह पाने वाले हैं, कामयाब होने वाले हैं। मुफ्लिह

0: हैं। फलाह का क्या माना होता है? फलाह का लफ्जी माना होता है काटना और चीरना, मेहनत और मशक्कत की तरफ इशारा है। फलाह फार्मर को कहते हैं। क्या करता है फार्मर? जमीन को काटता, चीरता, फाड़ता है, बीज बोता है, मेहनत करता है, पानी लगाता है, रातों को दिन को जागता है, धूप में काम करता है, देखभाल करता है, वक्त का बहुत पाबंद होता है। उसे पता होता है कि अब मसलन गंदम उगाने का मौसम है, आप देखिए कि वो ज़रूरत से ज़्यादा पानी नहीं डालेगा। डालते हैं पानी, ज़रूरत से ज़्यादा उसमें खाद नहीं डालते, पानी देना भूलते नहीं, भूलते फर्टिलाइज़र का एहतमाम करना है और कीड़ों से बचाना है, और जो गैर ज़रूरी किस्म के पौधे निकल आते हैं उनको निकाल के बाहर फेंकते हैं कि हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। और क्या करते हैं? कब्बे वगैरह से बचाते हैं, बारिश का भी इंतज़ार करते हैं। सर्टन टाइप ऑफ प्लांट्स और ट्रीज होते हैं जिनको विंटर में बोरियां पहना देते हैं और कवर कर देते हैं वरना वो ख़राब हो जाएं। और क्या करते हैं? पूर निकलने का इंतज़ार करते हैं, और फलदार हो तो फल निकलने का इंतज़ार करते हैं, और निकल जाए तो फिर क्या करते हैं? फल वक्त पर उसको काटते भी हैं। फिक्र होती? सबसे ज़्यादा क्या होता है सारे अमल में अव्वल से आखिर तक? फिक्र, ध्यान, पूरा दिल अटका रहता है ना उस चीज़ की तरफ। जब जाकर आपको कुछ हासिल होता है तो बिल्कुल इसी तरह मुत्तकी शख्स गाफिल इंसान नहीं होता, बेखबर नहीं होता, बेफिक्री जिंदगी नहीं गुजार सकता। उसका दिल दिमाग जागता रहता है, उसे आखिरत की फिक्र होती है, उसे हिसाब किताब की फिक्र होती है, वो मुसलसल अलर्ट रहता है, वो किसी दिन ऑफ ड्यूटी नहीं होता। अब देखिए, कभी ऐसा भी होता है ना कि आपको अचानक समर में फिर कहीं जाना होता है, कोई ट्रैवलिंग होती है या कुछ, फिर आप क्या कह के जाते हैं, क्या करके जाते हैं? किसी के हवाले करते हैं, किसी दोस्त के, किसी नेबर के, किसी को, कि प्लीज़ इसको पानी लगा देना, प्लीज़ ऐसे कर देना। आप ये थोड़ी करते हैं अच्छा खुद ही आएंगे फिर देख लेंगे, नहीं, पूरी केयर करनी। तो इस पूरे किरदार में, फार्मर के पूरे किरदार में एक लफ्ज़ आती है, केयर एंड कंसर्न। तो पूरी तरह वो केयरफुल होता है। तो मुत्तकी शख्स भी केयरफुल होता है, कॉन्शियस होता है, अपना दिल दिमाग इस्तेमाल करता है, चारों तरफ नज़र रखता है, समझदार होता है, गौर फिक्र करता है, एहतियात बरतता है। तो कामयाबी के लिए सारी सिफात ज़रूरी हैं। वह उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, हर शख्स कामयाबी चाहता है। तो कामयाबी के लिए क्या ज़रूरी है? हिदायत। हिदायत के लिए क्या ज़रूरी है? तकवा। तीन चीज़ें लिख लीजिए। क्या हम सब कामयाब होना चाहते हैं या नहीं? क्या हम इसमें सीरियस हैं? क्या हम आखिरत में कामयाब हों? क्या हम चाहते हैं कि ये बात हमारे बारे में हो? व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। क्या हम चाहते हैं कि जब हमारी मौत आए तो हमें ये खबर मिले कि तुम कामयाब हो गए और हमें भी यही पैगाम मिले? तो कामयाबी के लिए क्या ज़रूरी है? मेहनत, कोशिश, स्ट्रगल। लेकिन डायरेक्शन लेस स्ट्रगल नहीं। कौन सी स्ट्रगल? उसके लिए हमें डायरेक्शन चाहिए, हिदायत चाहिए, और वो कौन देता है? अल्लाह देता है। और उसके लिए किताब ज़रूरी है पढ़ना। और फिर हिदायत किस दर्जे की मिलती है इंसान को? कितनी मिलती है? जितना तकवा होता है। और तकवा के लिए क्या चाहिए होता है? मुसलसल फिक्रमंदी, कोशिश चाहिए होती है। ठीक है, वो कोशिश कहाँ नज़र आती है? कभी इकामत सलात में नज़र आती है, और कहीं मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून में नज़र आती है। तो ये कौन लोग हैं? सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, आयत नंबर 6 और 7 सूरत अल-बकरा। हम एक एक लफ्ज़ को ज़रा देख लेते हैं कि आपने इससे पहले क्या ये पढ़ा है और नए लफ्ज़ कितने हैं, क्योंकि नए लफ्ज़ अगर आप ज़्यादा तवज्जो से याद कर लें और जो आते हैं वो साथ दोबारा दोहरा लें तो बहुत जल्द आपको सबक याद हो सकता है। तो चलिए अपने टेक्स्ट के ऊपर देखिए। इन्ना, बेशक, क्या ये लफ्ज़ पढ़ा आपने पहले? नहीं पढ़ा, ये नया लफ्ज़ है आपके लिए। इन्ना का मतलब होता है बेशक। अल्लज़ीना, पढ़ा आपने? जी हाँ। कफरू, पढ़ा नहीं लेकिन जानते हैं ना? जी हाँ। काफारा, काफारा। सवा उन, बराबर है। उर्दू में लफ्ज़ आता है मुसावात, मुसावी, जानते हैं ना आप, उसी से है ये। अलैहिम, पढ़ा है कहाँ? गैरिल मग़दूब अलैहिम, अनामता अलैहिम। आ खा, हमजा। अब हमजा के ऊपर ज़बर है, और अरबी जबान में जैसे बिस्मिल्लाह में बा का हर्फ जो था वो अलग था और उसका माना साथ था, इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह में अल्लाह के साथ लाम का हर्फ था, लेटर था एक, और उसका मतलब के लिए था। इसी तरह आ हमजा सिर्फ एक लेटर है, लेकिन इसका मतलब क्या है, खा या क्या भी होता है इसका माना, ठीक है। अनजरतहुम ये नया लफ्ज है, लेकिन उर्दू में आप लफ्ज नजीर पढ़ते हैं। नजीर, नजीर कौन होता है, डराने वाला, खबरदार करने वाला। तो अनजरता का आप देखिए नून जाल रा, ये इसका रूट है, नून जाल रा, नजारा यंजुरु। तो अनजर ता का मतलब होता है तुम, जैसे अन अमता का मतलब है इनाम किया तूने, ता तुम, तूने के मानों में आता है। और अनजरता खबरदार करो तुम, हम उनको, अम या लम नहीं, तुंजिर हम तुम खबरदार करो उनको। तुंजिर में भी नून जाल रा वही रूट है जो पीछे हम अनजरता में देख रहे हैं। तो ये दो लफ्ज एक जैसे मिलते जुलते नजर आ रहे हैं आपको। ला नहीं, युमिनून वो ईमान लाएंगे, पीछे पढ़ा आपने युमिनून कहाँ पढ़ा है, अल्लज़ीना युमिनून बिलगैबी, तो रिपीटिशन हो गई। अच्छा ला का लफ्ज पढ़ा है आपने कहाँ, ला रही बफी, ये भी रेपिटेशन है। खत्मा मोहर लगा दी, खत्म उर्दू में इस्तेमाल होता है खत्म का लफ्ज, खत्म कुरान भी कहते हैं, लेकिन खत्म का यहाँ माना जो है वो किसी चीज को बंद करना, सील लगाना, कि वो बस खत्म कर देना। अल्लाहु अल्लाह ने, अला ऊपर पढ़ा पहले, अला अलैहिम में, कुलूबहिम कुलूब कल्ब की जमा है, और हिम उनके, कुलूबहिम उनके दिल, उनके दिलों पर, व अला और ऊपर, सम इहिम उनके कानों के, सम सीन मीम आइन सम हिम उनके, ये हिम वही है जैसे कुलूब हिम में और अंजरता हुम में और फिर पीछे अलई हिम, कभी ये हिम आता कभी हुम आता, डिपेंड करता है उससे पहले क्या लफ्ज आ रहा है, खा हिम हो या हुम हो माना एक ही है। व अला सम इहिम, व अला और ऊपर, अब सारी हिम, अबसार बसर की जमा है, इसका रूट है बा सादरा बसर, बसर आंख को कहते हैं, अबसार उसकी जमा है। गशावतुन, गशावा कहते हैं पर्दे को, गशी का लफ्ज सुना है कभी आपने, गशी क्या होती है, गशी बेहोशी, तो गशावा पर्दा, यानी बेहोशी में भी दरअसल क्या होता है, अकल पर पर्दा आ जाता है। वलहुम और उनके लिए अजाबुन, अजाब है अजीम बड़ा, अजीम का लफ्ज किस से है, ऐन ज़ा मीम से, अजमत इसी से लफ्ज निकला है। चलिए तफसीर देखिए, सूरत अल-फातिहा में हमने इंसानों के तीन ग्रोहों के बारे में पढ़ा, सूरत अल-बकरा के आगाज में सबसे पहले इनाम याफ्ता ग्रोह की बात हुई जिन्हें मुत्तकीन कहा गया, जो खालिस मोमिन होते हैं। उसके बाद सूरत अल-फातिहा में हमने दूसरी कैटेगरी के बारे में पढ़ा, अल-मग़दूब अलैहिम, जिन पर अल्लाह का गज़ब हुआ, वो लोग हैं जो जानते हैं लेकिन मानते नहीं, कुछ करके नहीं देते। यहाँ इसी दूसरे ग्रोह का जिक्र है, खालिस मोमिनों के बाद अब खालिस इनकार करने वालों का, खा वो अवाम में से हों या लीडर्स हों, उनका हाल और अंजाम बयान किया जा रहा है कि वो कौन है, दूसरा ग्रोह इंसानों में से किस किस्म का है। इन्ना बेशक, इंडीड, अल्लज़ीना वो लोग, बेशक वो लोग, कफरू जिन्होंने कुफर किया, कफरा लफ्जी माना होता है छुपाना, पर्दा डालना, डांप देना, और इस्लामी इस्तिलाह में इनकार करना, जिन्होंने इनकार कर दिया। अरबी में रात के लिए भी लफ्ज काफिर इस्तेमाल होता है, रात नाइट, क्योंकि उसमें अंधेरा होता है और अंधेरा क्या करता है, हर चीज के ऊपर पर्दा डाल देता है, उसको छुपा देता है। अगर आप कभी एरोप्लेन में सफर कर रहे हैं और नीचे देखें और रात जब होती है तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे जमीन को कोई चीज ढांप रही है, कोई चादर सी ऊपर डाल दी गई, मैं जब देखती हूँ जैसे लगता है जैसे प्यार से माँ ने ब्लैंकेट डाल दिया है बच्चे के ऊपर, उसको छुपा दिया है ताकि वो आराम कर ले। अब तो कफर का लफ्ज़ी माना होता है छुपाना, काफिर रात को भी कहते हैं क्योंकि रात छुपा देती है सब चीजों को, ढांप देती है। इसी तरह अरबी जबान में किसान के लिए, फलाह के लिए, फार्मर के लिए भी लफ्ज काफिर आता है, वो क्या करता है, बीज को जमीन में छुपा देता है, ढांप देता है, अगर ना ढांपे तो क्या होगा, चिड़िया खा जाएगी, कुछ भी नहीं उगेगा। तो काफिर जो है ये कोई गाली नहीं है, बाज लोग इसको गाली समझते हैं। काफिर कुछ लोगों के रवैये को जाहिर करने के लिए एक टर्म है, जैसे मुत्तकी, इसी तरह काफिर, इसी तरह मुनाफिक, इसी तरह फासिक। तो ये दरअसल सिफात हैं मुख्तलिफ लोगों के अमली रवैये की कि वो करते क्या है। तो अब अरबी में अगर रात को काफिर कहा जाए तो इसका मतलब ये कि रात को बुरा भला कहा जा रहा है, या किसान के लिए काफिर का लफ्ज इस्तेमाल हो तो वो कोई उसका ऐब या नक्स तलाश नहीं किया जा रहा, ये बताया जा रहा है कि उसकी हकीकत क्या है। तो यहां कुछ लोगों की हकीकत को बयान किया जा रहा है कि वो कैसे लोग हैं। तो इन अल्लदीन कफरू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया, इनकार किया, किसका इनकार किया, उस पैगाम का जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। कफरू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा गया उसका उन्होंने इनकार कर दिया। सवा उन बराबर है, सवा उन जो है ये इस्म है, नाउन है, अलैहिम उन पर, किन पर बराबर है, कुफार पर, इनकार करने वालों पर। क्या आ खा अंधरतहुम, तुम खबरदार करो उनको, डराओ उनको, आगाह करो उनको, अम लम या ना तुम विरहुम, तुम डराओ उनको, ला युमिनून, वो नहीं मानेंगे। उनका हाल बयान किया जा रहा है कि वो ईमान नहीं लाएंगे। ये जो अंधरता का लफ्ज है, नजारा का माना होता है किसी को खबरदार करना, वार्न करना, आगाह करना, खौफनाक चीज से खबरदार करना। क्या है वो खौफनाक चीज? भयानक अंजाम, बदतरीन अंजाम, इस जिंदगी के अख्तिताम पर क्या होने वाला है उससे खबरदार करना। लेकिन इसमें खौफनाक अंजाम तो होता है, मगर जो डराने वाले का अंदाज होता है वो धमकी वाला नहीं होता, वो शफकत और मोहब्बत वाला होता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो लकब है नज़ीर, डराने वाला, तो इसका मतलब ये नहीं खौफ ज़दा करने वाला और लोगों को धमकाने वाला और उनके साथ कोई ज्याती करने वाला नहीं, इंतहाई हमदर्दी और खुलूस और मोहब्बत और शफकत के साथ लोगों को उनके बुरे अंजाम से खबरदार करने वाला, ये माना है नज़ीर का। मसलन बच्चा अगर अपनी किसी गलती की वजह से मुसीबत में पड़ने लगे तो माँ उसको क्या करती, खबरदार करती है। लेकिन माँ का अंदाज आम तौर पर उसमें शफकत होती भी और कभी नहीं भी होती, धमकी ज्यादा होती है। लेकिन पैगंबर जो है उसके अंदाज में शफकत होती, इंतहाई मोहब्बत होती। अल्लामा इकबाल ने नबुव्वत को उमूमत से तशबीह दी है, नबुव्वत को उमूमत से। उमूमत क्या है? माँ जी, ममता ही कह लीजिए समझने के लिए, क्योंकि हमें ममता ज्यादा समझ आती। तो उमूमत से तशबीह दी कि जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए तड़पती है, ऐसे ही एक नबी अपनी कौम के लिए, इंसानों के लिए तड़पता है। सूरत अल-कहफ आयत 6 में आता है, फलअल्लाक बाख़िउन नफ्सक अला आसारिहिम, शायद कि आप अपने नफ्स को उनके आसार पे, उनके पीछे हलाक कर डालने वाले हो। जैसे एक माँ अपने आप को लिटरली क्या कर डालती है, बच्चे की मोहब्बत में हलाक कर डालती। उसके हमल के जमाने को, प्रेगनेंसी का पीरियड आप देखिए क्या हाल हो रहा होता है उसका, जब वो वॉमिट कर रही होती है, हलाकी कर रही होती है ना अपने आप, ऐसे लगता है बस जान ही निकल जाएगी अब उसकी, बचेगी नहीं खुद। फिर उसके बाद जो पैदाइश का मरहला होता है उसमें क्या वो मौत से करीब तरीन नहीं होता, हलाकत के करीब तरीन होता है ना, गोया अपने आप को एक नई जिंदगी के लिए हलाक कर डालेगी। तो नबुव्वत को उमूमत से तशबीह देने का मतलब क्या कि जैसे माँ एक बच्चे की खातिर उसकी पैदाइश के मरहले से लेके उसको दूध पिलाने, उसको खिलाने पिलाने, उसको परवान चढ़ाने में और फिर उसकी तरबियत में जिस तरह अपने आप को हलाक कर डालती है, एक पैगंबर उससे बढ़कर अपनी उम्मत के लिए, और सिर्फ अपनी उम्मत नहीं अपनी कौम, उम्मत तो बाद में बनती है ना जब वो ईमान ले आती कौम, उससे पहले अपनी कौम के लिए, और मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तमाम इंसानों के लिए रसूल बनाकर भेजे गए थे, तो तमाम इंसानों के लिए आपके दिल के अंदर ऐसी तड़प थी, ऐसा दर्द था कि जिसकी बिना पर आप चैन नहीं ले पाते थे, और आपका दिल ये चाहता था कि हर शख्स हिदायत पा ही जाए। अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नक ला तहदी मन अहबबता, आप उसको हिदायत नहीं दे सकते जिससे आप मोहब्बत रखते हैं, जरूरी नहीं कि हर शख्स हिदायत पा जाए, आप फिक्र ना करें। तो इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तरफ बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने इनकार कर दिया, अब वो नहीं मानेंगे, और दूसरी तरफ आपको तसल्ली दी जा रही है कि ये आपका कसूर नहीं कि वो नहीं मान रहे, आप अपना हक अदा कर रहे हैं, लेकिन ये उनकी किस्मत, वो नहीं मान के दे रहे। आप में से जितनी भी माएं हैं, क्या आप अपने बच्चों के लिए जो कुछ चाहती हैं वो सब करते करते आप चाहते हैं वो पढ़ें, वो मेहनत करें, वो खा लें, वो सो जाएं, वो हर काम में क्या कर रहे होते हैं? आप चाहते हैं वो सो जाएं, तो वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि अभी हम नहीं सोते। अब आपका दिल तकलीफ में है कि ये सो जाए और वो सोना नहीं चाहते। आप कहते हैं खा लें, वो खाना नहीं चाहते। आप कहते हैं पढ़ लें, वो पढ़ना नहीं चाहते। अब इसमें आपका क्या कसूर है? आपका कुछ कसूर नहीं। अच्छा, फिर आप कहते हैं तंग आकर तुम फेल हो जाओगे, तो इसका क्या मतलब है? यही डराना होता है, तुम फेल हो जाओगे। अब उनको फिर भी परवाह नहीं होती, तो कहते सो वट, क्या हो, कुछ नहीं होता, डोंट वरी, हमें अपनी मर्जी करने दे। तो कौम भी बच्चों की तरह बिहेव करती है पैगंबर के साथ, और वो है कि उनके पीछे अपनी जान घुला रहे हैं कि ये किसी तरह मान जाए। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जिन्होंने इनकार कर दिया है, अबू जहल ने, अबू लहब ने, इनके लिए बराबर है, खा तुम इनको खबरदार करो, डराओ, अमलम तुनजिर हम, या तुम उनको ना डराओ, ला युमिनून, ये नहीं मानेंगे, ये नहीं मान के देंगे। अब इसका क्या मतलब है कि पैगंबर जो है वो अपना काम नहीं कर रहा या अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा? उस पर नहीं इल्जाम आता। किस पर इल्जाम आता है? ना मानने वालों पर। आमतौर पर क्या होता है, जब बच्चे फेल होते हैं तो जिम्मेदार कौन होता है? वो भले ना भी जिम्मेदार हो, लेकिन वो अपने आप को जिम्मेदार समझ लेती कि इल्जाम मुझी पे आएगा, मैंने कुछ नहीं किया। तो पैगंबर को अपनी जिम्मेदारी अदा करने की इतनी फिक्र थी कि कहीं कयामत के दिन कोई मेरा गरेबान ना पकड़े कि मैंने नहीं बताया। तो आपको तसल्ली दी जा रही कि आप फिक्र नहीं करें। अब मसलन अगर एक माहिर डॉक्टर किसी मरीज को देख के ये कह दे कि ये बचने का नहीं, तो इसका क्या मतलब है कि अगर वो मर जाए तो डॉक्टर की शामत? किसने कहा था इसलिए वो मर गया? क्या डॉक्टर के कहने से कोई मर जाता है? नहीं। तो ये जो कहा गया है ला युमिनून, तो इसका ये मतलब नहीं कि इसमें पैगंबर का कोई कसूर है या उसके पहुंचाने में कोई कमी है। ये उनका हाल खोल के बयान किया जा रहा है कि जिन्होंने इनकार कर दिया है वो नहीं मानेंगे, आप नहीं परेशान हो। फिर उसके बाद आगे फरमाया खत्म अल्लाहु, मोहर लगा दी अल्लाह ने। खत्मा, खत्म का माना होता है सील करना या मोहर लगाना, किसी चीज को इस तरह बंद कर देना कि ना उसके अंदर कुछ जा सके और ना अंदर से बाहर कुछ आ सके। तो अल्लाह ने उनके दिलों को सील कर दिया है, अब उनके दिलों के अंदर ईमान नहीं जाएगा, नूर नहीं जाएगा, नूरे हिदायत अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि दिल बंद हो गए उनके। खत्म अल्लाह अला कुलूबहिम, उनके दिलों पर, कुलूब कल्ब की जमा, और कल्ब अरबी जबान में कहते हैं उलट पुलट होने को, क्योंकि दिल भी इंसान के कैसे होते, एक हालत पे नहीं रहते, कैसे होते दिल? एक हालत पर नहीं रहते, दिलों की हालत बदलती रहती है। कभी आप एक चीज को, एक खाने को बहुत इंजॉय कर रहे थे, और कभी दूसरे वक्त में उसी खाने को, खाने को आपका दिल नहीं चाह रहा था। अब भाई खाना तो वही है, आपको क्या हुआ? आपका दिल बदला हुआ है। तो दिल को दिल कहते ही इसलिए है कि वो एक हाल पर नहीं रहता, उलट पुलट होता रहता है। इसीलिए हमें दुआ मांगनी चाहिए, या मुकल्लिब अल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिक, ए दिलों को उलट पुलट करने वाले, हमारे दिल को अपने दीन पर जमा दे। तेरे दीन पर जब आए ये दिल, तेरी तरह मायल हो, तो फिर ना उल्टे, फिर आगे पीछे ना हो, बस वो फिर उसी पर ही ठुक जाए। ये दुआ भी कुरान और मसनून दुआ की किताब में लिखी हुई है। खत्म अल्लाह अला कुलूबहिम, अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी है। वा अला समइहिम, और उनके कानों पर। सीन मीम ऐन सम का लफ्ज कान और समात दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। क्या कहा मैंने? सम का लफ्ज कान और सुनने की सलाहियत दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। अब कुलूब जमा है, आगे अबसार भी जमा है, लेकिन सम का लफ्ज जो है ये वाहिद है, और कुरान पाक में जहां भी सम का लफ्ज आया है सिंगुलर ही आया है। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
1: अस्सलामु अलैकुम। مزید معلوماتی تعلیم و تربیت پر مبنی سیریز اور لیکچرز کے لیے سماعت فرماتے رہیے انسپائر ایف ایم.
2: کمنگ اپ نیکسٹ از بول کے لب آزاد ہیں تیرے وِد آزاد.
3: کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم. انسپائر ایف ایم.
4: Rishta Networking is back in a brand new location at the Amberley Gardens Marquee in Bedford. If you're looking for a spouse in a respectful, halal environment, join us for an organized matrimonial networking event designed for serious, marriage-minded Muslims. You'll have the chance to meet up to 50 potential matches in a safe, structured, and comfortable setting, and also enjoy a delicious three-course meal. Join us on Saturday, 12th of September from 11:30 a.m. to 4:30 p.m. at the Amberley Gardens Marquee in Bedford. Limited seats are available, so register now at Rishta networking.co.uk.
5: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims, the specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years' experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
6: In a world searching for hope, there was one man whose mercy changed history. A leader, a teacher, a father, a husband. Our beloved messenger of Allah, sallallahu alayhi wa sallam, this Rabiul Awwal, journey through his life with Inspire FM. Join us for a special week of powerful talks and inspiring reminders as we discover the mercy, wisdom and character of our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a mercy sent to all of mankind, only on Inspire FM.
7: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering and much, much more. We specialize in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10 E, Britannia Estate, Lee Grave Road, Luton.
8: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Topps Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites, then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
9: السلام علیکم, میرا نام کیرن ہے. کوٹ کشمیر آرفنز ریلیف ٹرسٹ میرا ایک خوبصورت گھر ہے جہاں میرے ساتھ سینکڑوں یتیم اور بے سہارا بچوں کی تعلیم و تربیت اور پرسکون ماحول میں پرورش ہو رہی ہے, اور یہ سب کچھ آپ کے تعاون سے ممکن ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو سدا سلامت رکھے, اور امید ہے کہ آپ اسی طرح اپنا پیار, محبت اور تعاون جاری رکھیں گے. کوٹ یو کے آفس 03001233774 court.org.uk.
10: Amat al-Wahid was a distinguished master of the Quran. She served as a mufti in Baghdad and had the authority to give legal verdicts.
11: From the studios of Inspire FM, the time is now midday.
12: بچپن سے سنتے آئے ہیں, یہ نہیں کہنا, وہ نہیں کرنا, سوال نہیں پوچھنا, اور پھر اسی روش سے ہمارے ذہنی اور معاشرتی مسائل الجھتے چلے گئے. ہمارے مسائل ہمارے حالات سے نہیں, ہمارے خیالات سے پیدا ہوتے ہیں, اور خیالات درست کیے جا سکتے ہیں. میں ہوں آزاد, اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم سب آزاد ہو سکیں اپنے ہی پیدا کیے ہوئے مسائل سے, تو بات کیجیے, کیونکہ اب بول کے لب آزاد ہیں تیرے. اونلی آن انسپائر ایف ایم.
13: ہائے Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth, and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very, very warm welcome to the show. Sun rahe ji aap bol ke lab azad hain tere.
14: Jitna meri aankhon se aansu nikle hain, jitna main akele mein jaake, you know, takleef mein raha hu, pareshan raha hu, jab aapke maa baap se leke jinhone aapko paida kiya hai, se leke aapke best friends, aapki zindagi, aapke dost, aapke ird gird ke sare log हमेशा ये कहते रहे वी बिलीव इन यू, बट उनकी आंखों में वो बिलीव नहीं था, उनके एक्शंस में वो बिलीव नहीं था. ये सारे लोग मिलजुल कर आखिर में एक ही कोशिश करते हैं कि आप किसी तरह उनकी तरह हो जाएं और अपना रास्ता छोड़ दें. तो आप अंदर से कभी कभी ये सब हो जाता है, लेकिन आपको पता है आप क्या करने जा रहे हैं. और जो जो एक्शंस मैंने उनके लिए लिए, जो सेकेंड जनरेशन के लिए लिए, जो अभी कर रहा हूँ, ये सब एक एक करके फिर एक दिन आएंगे और आपके एहसानमंद भी होंगे, शुक्रगुजार भी होंगे. बट वी डिडंट डू इट फॉर दैट. We did it because this was the right thing to do, because it was the right kind of love that you needed to know and show, and it was the right kind of attitude that you need to have, adopt, adapt, and then deliver. तो ये सारी वो चीज़ें, इससे वापस कुछ नहीं चाहिए था. वापस देने की इंसान बेचारे की औकात ही नहीं है. वो आज आपके लिए बहुत अच्छा है, कल लड़ पड़ेगा, नाराज़ हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, वो अजीब अजीब बातें करेगा, वो भूल जाएगा आपने उसके लिए क्या किया. क्योंकि इंसान भुलक्कड़ है, भूल जाने वाली चीज़ है, ना शुक्रा है और बेसब्रा है. लेकिन ये जिस यूनिवर्स का हम हिस्सा हैं, जिसके हमारे अंदर डिवाइन स्पार्क है, वो कुछ नहीं भूलता. उसका रिकॉर्ड स्ट्रेट है, सामने है, रिजल्ट्स हिस्ट्री का सामने है. वो ज़र्रे के बराबर ना कोई चीज़ भूलता है, ना उसको चूक होती है, ना कोई ऊंघ आती है, ना कोई नींद आती है. ये सब कहीं ना कहीं रजिस्टर हो रहा है. इस सब का, जो कुछ आपने किया है, उस सब का बदला, बल्कि उससे बहुत ज़्यादा का वो देगा जिसकी औकात है ये सब करने की. हमारी इंसानों के लोगों की नहीं है. इनके लिए आप अच्छा सोच सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं. जब आप रब कहता है कोई ऐसा है जो मुझसे कारोबार करे, क्यों उसने कहा कि मुझसे करे? क्योंकि फिर मैं उसको जो रिटर्न करूंगा, मैं अपनी मैग्नानिमिटी में उसका रिटर्न करूंगा. आम इंसानों से हम दुखी हो जाते हैं, इतना काम किया, इतनी ज़िंदगी दी, इतना उसके साथ साथ किया, फिर उसने ये किया, फ़लाँ ने इतना नहीं सोचा, इतना नहीं किया, उन्होंने हमारे लिए इतना स्टैंड नहीं लिया. ये बहुत छोटे मसाइल हैं, ये नहीं लोग पूरे कर सकते. ये बहुत बड़ा काम है और इसके बहुत बड़े रिटर्न्स हैं. तो छोटे छोटे, यू नो, 1% 2% के दिमाग इस्तेमाल करने वाली मखलूक और इस तरह जीने वाली, ये इसके रिटर्न्स नहीं दे सकती. कोशिश. और दूसरी बात जो आप अक्सर कहते हैं और दुखी हो जाते हैं, रब नहीं आपको जीत, उसने नहीं कहा कि तुम जीत जाओ, उसने नहीं कहा कि तुम हार जाओगे तो ये हो जाएगा. उसने कहा मैं सिर्फ इतना कुछ चल रहा है, ब्रेन वेव चल रही है, ब्रेन में केमिकल्स चल रहे हैं, सोसाइटी का प्रेशर है, माँ बाप का प्रेशर है, सोसाइटी के सेट स्टैंडर्ड्स हैं, जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं उनके, उसके बीच में एक आदमी सोच रहा है, सही रास्ता ढूंढ रहा है, अपने आप को पाने की कोशिश कर रहा है. इसके बीच में अजीम तरीन काम आप पहले से कर रहे हैं, तो टेंशन क्या है? और वो है कोशिश करना. कोशिश के सारे पैसे हैं, कोशिश की सारी वैल्यू है, कोशिश के ऊपर ही. और कोशिश से पहले नीयत है आपकी, नीयत और फिर कोशिश, यही इंसान की महराज है, यही उसकी जैनत है, यही उसके टेस्ट का परफेक्ट होना है, और यही उसकी डिलीवरेंस है. तो टेंशन कहाँ है? अब आपको समझ आ रही है कि एक्चुअल में कोई नहीं है, तो व्हाई टू बीट अप आवरसेल्व्स? नो प्रॉब्लम. नाइस ऑफ यू ब्रदर, थैंक यू वेरी मच. साथ भी रहिएगा और इंशाल्लाह चीज़ें को कुछ नहीं, मैं खुद आपके साथ. ये देखें, अभी नाक साफ किया. मैं अजीब एक्टर हूँ, जो कि मैंने देखा है शोज़ में, मैं जब फिल्म में एक्टिंग करता हूँ, मैं जब मेरे आंखों में आंसू आते हैं इमोशनल सीन पे, नाक बहना शुरू हो जाती है. अगला जो प्ले आने वाला है उसमें मैं किसी को सुना रहा हूँ कि भाई ये प्ले है, तो अब जब इमोशनल सीन आता है तो आंखों से आंसू खुद ही बहने लग जाते हैं. तो एक पाकिस्तान के बहुत बड़े एक्टर हैं, उन्होंने मुझे कहा भाई मुझे लोग शहनशाह जज्बात कहते हैं, मैं रोने में कम से कम 1-2 मिनट लगाता हूँ, तू रिहर्सल्स में भी आंखों के ऊपर तूने आंसू रखे होते हैं, कैसे करता है ये? तो मैंने कहा सर देर इज़ नो लॉजिकल आंसर टू दैट एक्सेप्ट आई एम अ पठान, वी वर ट्रेंड नॉट टू शो आर इमोशंस एंड स्पेशली टीयर्स. और उसके बाद हम फौजी बने. उन्होंने कहा कि जी मर्द को दर्द नहीं होता, हालांकि बहुत दर्द होता है मर्द को, बहुत ज़्यादा, सोच भी नहीं सकते कि आप मर्द को कितना दर्द होता है, ठीक. लेकिन तो वो 30-32 साल तक जालिमों ने हमें रोने नहीं दिया, तो बाद में हमें पता चला हम सारे का सारा एक्टिंग में निकाल देंगे, कभी छोटा भाई बन के, कभी बड़ा भाई बन के, कभी बाप बन के, कभी इमोशन किसी दूसरे की आंखों में रिफ्लेक्ट जब हमसे टकराएंगे तो खुद बखुद सब कुछ हो जाएगा. यू डोंट हैव टू डू मच. एफर्टलेस ईज से एक्टिंग भी हो जाएगी, राइटिंग भी हो जाएगी, और जब मैं थकने लगता हूँ ना, मैं सब कुछ छोड़ के पीछे होके बैठ जाता हूँ कि जोर नहीं लगाना, जोर लग रहा है, और लोगों के साथ जोर लग रहा है तो सिस्टम दोबारा बनाएंगे, काम दोबारा करेंगे, कोशिश दोबारा करेंगे, जोर नहीं लगाना। हर चीज़ आपके आंखों के सामने हो, सब स्लो जाएगी। एक्टिंग में उन्होंने हमें एक चीज़ सिखाई थी, गो स्लो, आप ब्रेन को स्लो कर लो। जैसे मार्वल की फिल्मों में स्लो करते हैं तो सुपरमैन को सब कुछ नज़र आता है, अपनी तरह से वो गोली बड़ी तेज़ जा रही होती है, और फ्लैश को भी नज़र आता है, लेकिन वो बहुत स्लो जा रही होती है क्योंकि उसकी स्पीड उससे बहुत ज़्यादा है। तो बिल्कुल इसी तरह हमारे जहन की स्पीड बहुत ज़्यादा है। यू हैव टू लर्न टू स्लो इट डाउन। एंड हाउ एम आई एंड यू एंड अस आर गोइंग टू डू इट, वी आर गोइंग टू डू अ शो विच इज़ कॉल्ड ट्रेन योर ब्रेन। तो बहुत जल्द इंशाल्लाह ये होने वाला है, बहुत सारे इसके ऊपर सैर हासिल किस्म की इन्फॉर्मेशन भी और अपनी प्रैक्टिस भी मैं साथ साथ करके दिखा रहा हूँ, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। नाइस ऑफ यू ब्रदर, थैंक यू वेरी मच, मेहरबान हमारे साथ, करते हैं उनसे बात। जी हेलो,
15: इनको वाले मैम?
14: हाँ जी, इनको वाले आगे।
15: ओके ठीक। अच्छा, सो एक माँ होने के नाते घर में रोबोटिक स्टाइल पे सारे काम होते हैं, जिसमें बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं, वो कंप्लीट करनी होती हैं, बचपन से हो रही हैं, काफी सालों का वो बॉडी में उसमें यूज्ड हो गया सब कुछ। अब ये होता है कि बच्चे जो हैं वो बड़े होते हैं, तो हमारा जो देसी माओं का रिवाज है कि हमने बच्चों को, हमें, हम उसे लव एंड केयर कहते हैं, लेकिन आजकल की दुनिया में उस लफ्ज को डिसेबलिंग, वो डिसेबल हो रहे हैं बच्चों को, वो चीजें आ नहीं रही जो उन्हें जिंदगी चलाने के लिए जरूरी चाहिए। तो एक तरफ बच्चे हैं घर में तो उनके लिए किया जाता है, दूसरी तरफ माए उनके लिए भी उसी प्यार मोहब्बत से किया जाता है, काम सेम है। इन दोनों में से मैंने जो एक बेटी से सीखा और एक माँ से सीखा, मेरी बेटी ये चाहती है कि इतने सालों से मैं जो कुछ कर रही हूँ उनको मैंने कुछ करने दी, मेरा ये था कि आप स्कूल जाओ, अच्छे ग्रेड लाओ, दैट्स ऑल आई वांट, बाकी सब हो जाएगा, मुझे किसी ने टीच नहीं किया था, मैंने भी जिंदगी से ही सीखा है तो आपको भी आ जाएगा। तो अब उसका ये है कि वो इतनी मैच्योर है कि वो कहती है कि आपने जो कुछ किया है थैंक यू सो मच, लेकिन अब आप मेरे किसी काम को हाथ नहीं लगाओगे। और वो माँ जो इतने सालों से कर रही है उससे ये लग रहा है कि ये बेटी अब इससे दूर होना चाहती है, इससे प्यार नहीं करती, ब्ला ब्ला ब्ला, वो जो फालतू सोचे मेरे पास आ रही थी। तो मैंने उनको अपने ऊपर हावी होने दिया थोड़ी देर के लिए, लेकिन ये मेरी बेटी ने जब मुझे कहा कि मेरी चीजों को आप हाथ मत लगाओ, मैं खुद से करूंगी, ये एक बात है। अब मैं माँ के घर जाती हूँ तो मैं अपनी माँ से कुछ चीजें शेयर करती हूँ, मेरी उम्मीद ये होती है कि ये मेरी पर्सनल लाइफ की चीजें हैं, जैसे कोई वीडियो है, कोई बात है, तो वो मेरी अम्मी अपने तक रखें। लेकिन शायद एक, जी शायद एक माँ होने के नाते उन्हें लोगों को ये बताना है कि वो फख्र महसूस कर रही है, मैं अपने आप को पॉजिटिव सोच में लेके जा रही हूँ, तो मैं कहती हूँ कि आप इसको शेयर ना करें। अब उन्होंने मुझे नहीं बताया कि उन्होंने शेयर किया है, लेकिन जिनको बताया है उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने कहा है कि ओ ब्ला ब्ला ब्ला, आई फाइंड आउट दिस फ्रॉम योर मामा, तो आई जस्ट वॉन्ट टू मेक श्योर ये ठीक है या नहीं। तो उस वक्त तो उनके साथ मैंने बातचीत कर ली, फिर मामा को आराम आराम से बात करते हुए मैंने समझाया कि देखिए कुछ चीज़ें मेरी ऐसी हैं जो मेरी पर्सनल हैं, जब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि एक माँ होने के नाते उसको आप अपने तक रखो। तो अब मेरी अम्मी की सोच एक अलग सोच है, उनको वो चीज़, मेरी बेटी ने जब मुझे कहा है कि मेरी चीज़ों को हाथ मत लगाना, उन्होंने टेक्स्ट किया, मैंने तमाम कर दिया, बात खत्म, लेकिन मेरे दिमाग में सोचें चल रही थी। अब मामा को मैंने ये बताया तो उन्होंने आगे से, हम फेस टू फेस बात कर रहे हैं तो वो आगे से शील्ड अप है, तो मैं तो ऐसे कर ही नहीं सकती, आपने खुद बताया होगा, जो भी उनका तरीका होता है। तो अब इन दोनों सोचों में मुझे ये चेंज करना था कि मैंने अपनी एक बात अपनी माँ को बताई है, मेरी माँ ने उसे जिस तरीके से डील किया है कि उनकी सोच है कि कोई बात, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बुढ़ी त्रीमो तो मार डो ना दस्या कर, मेरे साथ शेयर ही ना किया करो अगर ऐसी बात है, तो बजाय इसके कि जी नेक्स्ट टाइम ऐसे नहीं करूंगी, सॉरी हो गया। अब बेटी के लिए मैंने क्या सोचना है कि मेरी जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको मैंने चेंज किया, तो मैंने ये सोचा कि मैं अपनी माँ को एक चीज सिखाना बताना जा रही हूँ, लेकिन मेरी अम्मी की सोच के मुताबिक वो चीज उनको समझ नहीं आ रही, लेकिन जो चीज मेरी बेटी मुझे बताना चाह रही है मैं उसको क्यों नहीं सीख पा रही, मुझे ये सोचना चाहिए कि आया इस बात में उसकी मुझसे अलग होने की सोच है, या वो मुझे ये बता रही है कि अब मैं अपने काम खुद करना चाहती हूँ, थैंक यू सो मच जो आपने मेरे लिए लाइफ भर पूरी जिंदगी किया। तो उनको मैंने जी
14: सारी बात समझ गया, जो आपने बताई okay. वो भी, जो आपने नहीं बताई वो भी, और सिर्फ मुझे ये बता दीजिए मांझी जो हैं उनकी क्या एज है?
15: 77.
14: आप देखें मेरे साथ रहे, 77 उनकी एज है, वो तकरीबन पुराने ज़माने में 17-18 साल की उम्र में शादियां हो जाया करती थीं, उसमें उसके बाद आप अपनी एज को बीच में डाल लें और उसके बाद जो भी अभी आपकी एज है, उसके बाद जो बच्ची है आपकी, उसकी जो एज है, ये 3 generations की बात हो रही है, ये कम अज़ कम 150 से 175 साल की बात हो रही है सब ईयर्स अगर मिलाए जाएँ तो. 3 totally different mindset, 3 totally different time and space. आपका अपनी माँ और आपकी बच्ची का आपके साथ, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ब्रेन में क्या होता है, स्टेटस को क्या होता है, और वो फर्स्ट जनरेशन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है सब कुछ, और क्यों वो हर बात, उनको प्राइवेसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, वो किसी अकलमंद बंदे को नहीं जानते थे, उसका एक रीज़न है. उनको कभी भी किताब जो है उस तरह पढ़ाई नहीं की जैसे पढ़ाने का हक था. बता तो रहा हूँ 400 साल से हमारे बुजुर्गों के जहन पर कोई काम नहीं हुआ हुआ, वो चलती आ रही है जो भी पुरानी ज़माने की कन्वेंशनल विजडम पे, जो 1-2% बंदे का जो दिमाग इस्तेमाल होता था वो जो कहता था उसकी अपनी इंटरप्रटेशन बनाकर, वो जिसकी जो भी इंटरप्रटेशन थी उसको करके तो एक और अपनी मर्जी का एक बंदा बात शुरू कर देता था. चाइनीज़ विस्पर का जो कॉन्सेप्ट है ना वो बड़ी कमाल चीज़ है, एक बंदा एक से कोई बात करता है, वो दूसरे से, वो तीसरे से, मैं जब किसी को कोई काम कहता हूँ, वो जब किसी दूसरे से बात करके मेरे पास जब वो बात आती है तो 3 बंदों के बीच में बात बदल जाती है. ठीक है, क्योंकि क्या वर्ड्स यूज किए जाते हैं, उस बंदे का माइंडसेट, उसका प्रोसेसर कैसे प्रोसेस करता है इन्फॉर्मेशन को, उसने वो बात कैसे ली, उसमें क्या डाला. इसीलिए मैं लोगों से कहता हूँ जो वर्ड मैंने यूज किए हैं सिर्फ यही करना है, अपनी स्पिन ना डालना है उसके ऊपर, क्योंकि जब आप अपनी स्पिन डालने की उसके ऊपर कोशिश करते हैं तो उन वर्ड्स को जिस मकसद के लिए बोला गया है, जिसके लिए वो वर्ड स्पेसिफिक थे, जिस बात को और जिस फ्यूचर को सामने रख के और उसकी हिस्ट्री को 5-10 साल की सामने रख के बोला गया है, ये ऐसे ही जाएंगे तो ऐसे ही इसका इम्पैक्ट होगा. ये किससे आप सीखते हैं? रब से सीखते हैं. वो कहता है कि मेरी बात में अपनी बात ना शामिल करो, और एक भी मेरी बात अगर तुम्हें समझ आती है तो उसको आगे पहुँचाओ वैसे ही, और इससे थोड़ा बहुत फायदा नहीं है हासिल करना जिसके लिए तुम ये बाकी सारे का सारा कॉन्सेप्ट ही बर्बाद कर देते हो, उसकी इंटरप्रिटेशन में सब खराब कर देते हो. तो इससे आदमी ने ये समझना है कि ये सब ऑर्डर पास करने से पहले, कम्युनिकेट करने से पहले, कोई रिक्वेस्ट पास ऑन करने से पहले इन तमाम चीज़ों को देखा जाता है. वीक आदमी को स्ट्रांग थॉट भी देंगे तो उसको कमज़ोर कर देगा. इसीलिए मैं लोगों से कहता हूँ हर बंदे से मशवरा ना किया करें. जो आपकी रही सही हिम्मत होती है वो भी बुजदिल आदमी जो है वो खा जाता है, और उससे बात करके वो जो एस्पेक्ट आपको दिखाएगा वो कभी आप वो काम नहीं कर पाएंगे. जिंदगी में बड़े बड़े काम जो मेरे इर्द गिर्द लोगों ने किए, जिनको मैंने खुद विटनेस किया है या देखा है या किया है, वो सब के सब एक कॉन्सेप्ट को लेने के बाद, आइसोलेशन और उसके बाद बिलीफ को डालने के बाद, प्लान करने के बाद, उसके बाद एक एनवायरनमेंट के अंदर, माइंड के एनवायरनमेंट में बनाने के बाद, एक स्पेस के अंदर ही ऑपरेट किए जा सकते हैं. एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर लोग शुरू करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मिरेकुलस चीज़ें लोगों तक पहुंचती हैं. जितने लोग आप बीच में इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए कोर टीम्स में 1, 2, 3, 4 लोग होते हैं, वो भी एक ब्रेन वेव के लोग होते हैं, वरना सब का सब खराब हो जाता है. अब आते हैं आपके स्पेसिफिक प्रॉब्लम की तरफ. इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम की तरफ जो अभी आपने कहा है, इसमें 3 generations इन्वॉल्व हैं. एक माँ है जो बीच में है, वो अपनी माँ से जब कोई बात करती है तो वो माँ उसको प्राइवेट नहीं रख पाती, और फिर आप उससे जब समझाते हैं उनको कि ये प्राइवेट बात है, इसको बाहर ना निकालिएगा, तो उनका पहला, क्योंकि वो जिस जनरेशन की हैं आज से 100 साल पहले, उन्होंने कभी अपनी गलती नहीं मानी. वो मर गए, तरस गए, ख्वार हो गए, लेकिन उन्होंने कभी अपनी गलती नहीं मानी, और यहीं से बर्बादी का पहला सबक वहां से शुरू होता है जब आप अपनी गलती नहीं मानते. और उसके रीजन है, हम बड़े हैं, हर दाढ़ी वाला बुजुर्ग नहीं होता, हर उम्र में बड़ा आदमी अकल में बड़ा नहीं होता. कई लोग जिनकी अकल दाढ़ी नहीं निकली वो बहुत अकलमंद लोग होते हैं. ठीक है, ये मेरी लाइन है पिछली वाली गालिब की थी. अच्छा, तो काम की बात जो बीच में करनी थी, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, मिस नहीं होनी चाहिए. क्यों ना, फन करते हुए मैं बोर हो जाता हूँ जब सीरियस बात करते हुए, तो मैं अपना एंटरटेनमेंट खुद ही, यू नो, दूसरों पे मैं नहीं बैठता. तो आपने ये समझना है कि वो कभी अपनी गलती नहीं मानेंगे, کچھ بزرگ اور کچھ بڑے لوگ جو 50 سال سے اوپر ہیں, جب لوگ مجھے ان مسائل کے ساتھ لے کے آتے ہیں کہ ان کو میں نے بہت سمجھایا, ہم لوگ ہندکوں میں کہتے ہیں ایک خدا کیتا میں نے, یعنی میں نے اس کو سب ٹروتھ سمجھایا, ریزن دی, لاجک دی, جو اس نے دیکھا ہے سچ وہ سب بتانے دکھانے کی بھی کوشش کی, لیکن بندہ نہیں مان رہا. ٹھیک, تو میں نے کہتا ہوں وہ ایسے ہی ہیں, ایکسیپٹ دیم دا وے دے آر, دیٹ از ہاؤ ایگزیکٹلی ہاؤ دے آر گوئنگ ٹو گو ٹو دیئر گریو. دے کین ناٹ چینج, دے کین ناٹ چینج, دس از ناٹ دیئر ٹائم ٹو چینج. اگر یہ بدل جاتے تو ان کی زندگی میں اب یہ چھوٹے موٹے مسائل ہوتے, یہ اتنے مزریبل ہوتے, یہ اپنی اولاد سے ناراض ہوتے یا لڑتے اس وقت جب ان کو اولاد کی ضرورت ہے, لیکن وہ ایک تھاٹ پروسیس بن چکا ہے. ہمارے جو بڑے ہیں نا سینئرز, وہ صرف اس وقت اولاد سے ان کو تکلیف ہے کیونکہ انہوں نے جذباتی وابستگیاں بہت کی ہیں اور ان کا کل کائنات اور سرمایہ ان کی اولاد تھی جس کو انہوں نے ایسٹ نہیں بنایا اپنے لیے, اور وہ خود ایسٹ نہیں بنے. اب جو ان کو ان سے خواہشات ہیں وہ اولاد پوری نہیں کر پا رہی کیونکہ آگے سے اس اولاد کی اپنی اولاد ہے جس کے بہت سارے لنجے ہیں, بہت سارے مسائل ہیں. اور وہ اور یہ جو مڈل والی ہماری جنریشن ہے, ملینیلز والی, اور یہ جو جنریشن ہے اس جنریشن کے ساتھ اور بڑا پرابلم ہے. جو سینئرز انہوں نے دیکھے تھے ان کی طرح کی ان کا ٹائم اینڈ اسپیس بدل چکا ہے, یہ اب ان کی زندگی نہیں ہے. آگے وہ جو کنفرنٹ کر رہے ہیں اپنی اولاد کی وجہ سے جس انوائرمنٹ کو, جس ٹائم اینڈ اسپیس کو, اس میں بھی وہ فٹ نہیں آ رہے, تو وہ سینڈوچ ہو گئے ہیں دو جنریشنز کے بیچ میں. بٹ اسی سینڈوچ کے جو لوگ ہیں, جو ہم لوگ ہیں, انہیں کو سمجھنا پڑے گا کہ جو ہم سے سینئرز ہیں وہ نہیں بدل سکتے, ان کا زمانہ بدل گیا. اس لیے حضرت علی کا وہ کال کہ اپنی اولاد کو اپنے زمانے کی تعلیم مت دو, وہ تمہارے زمانے کے لیے نہیں پیدا ہوا. 50 سال کے ایج ڈفرینس میں زمانہ قیامت کی چال چل جاتا ہے اور آپ کی مرضی پر وہ نہیں چل سکتے, چیزوں کو اڈیپٹ کرنا پڑتا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ مومن اپنے زمانے سے ہم آہنگ ہوگا, یعنی ایمان والا, ا بلیور از گوئنگ ٹو بی ون, وہ جو وننس ہے اس کی زمانے کے حساب سے ہوگی. اس زمانے کے آرٹس, اس زمانے کی سائنس, اس زمانے کی ٹیکنالوجی, اس زمانے کی ویپنری اس کے پاس ہوگی, پرانے زمانے میں نہیں رہے گا وہ. تو وہ اپنے آپ کو اپ گریڈ کرتا رہے گا, اب ریسٹ رکھے گا نئے زمانے کی تمام جو چیلنجز ہیں, اور اس کے ساتھ وہ لڑ سکے گا. تو یہ جو بیچ کی جنریشن ہے, جو ہماری جنریشن ہے, جس کا اصل کام, جس کے بارے میں میں بات کرتا ہوں, کہ اوپر والے کا کام ختم ہو چکا ہے. اس میں سے کئی لوگ جو بولتے ہیں وہ کرتے ہی نہیں ہیں, یاداشت ان کی کمزور ہو چکی ہے, وہ بیماریاں اور اپنی دوائیاں کھانے سے اور باقی چیزوں سے اور پرانے زمانے کو صرف یاد کر کے. وہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب, چھین لے مجھ سے حافظہ میرا, ایسے کسی نے نہیں کہا تھا, کیونکہ یاد ماضی میں, ماضی میں انہوں نے کوئی لورلز اچیو ہی نہیں کیے, ایک ہی انہوں نے چیز کی تھی, سروائیو کیا تھا, اور دوسرا آپ کو بڑا کیا تھا تاکہ آپ اس وقت میں ان کی ہیلپ کریں, لیکن وہ آپ کی کوئی ہیلپ نہیں کریں گے. کیا آپ ان کی ہیلپ کریں؟ جیری مگوائر میں تھا نا کیوبا گوڈنگ جونیئر, جو پاگل کر دیا اس نے ٹام کروز کو, کہتے تو ہیلپ می ہیلپ یو, ہیلپ می ہیلپ یو, اور اتنی اس نے ایموشنل اسپیچ دی, آئی تھنک اٹ واز ان دا ریسٹ روم, یا اس کا جو ریسٹنگ روم تھا وہاں پہ, اور وہ اس کی طرف چپ کر کے دیکھتا رہا کہ اس نے اتنے دل و جان سے کہا, اور بالکل مر رہا تھا وہ کیونکہ اس کا وہ آخری کلائنٹ تھا, اور کیوبا گوڈنگ جونیئر ہنس ہنس کے اس کا پھر مذاق اڑا رہا تھا کہ ہیلپ می ہیلپ یو, یعنی مجھے کیا چاہیے تم کیا کر رہے ہو, حالانکہ وہ یہی کہہ رہے تھے تو میری ہیلپ کر, میں تیری ہیلپ ہی کرنا چاہتا ہوں, تو اکیلا میرے پاس رہ گیا ہے, تو ہی میرا سب کچھ ہے, تو سمجھ بات کو, اور میرے لیے میک اٹ ایزی فار می ٹو ہیلپ یو. لیکن وہ اپنی مرضی کا ایک بندہ تھا, آخر میں جب اس نے وہ کیا جو یہ چاہتا تھا تو اس کی زندگی ہو گئی میریکل, اور اس کا بھی کام ہو گیا, لیکن اس سے پہلے بہت مشکل اور تکلیف دہ کام تھا. جس فلم سے آپ نے صرف یو کمپلیٹ می کی جذباتی اداکاری اٹھائی, اس سے ہم نے یہ اٹھائی تھی بات, ٹھیک ہے جی. تو اس میں جو کرنے والے ہیں, ہر آدمی اپنی سوچ سمجھ کے مطابق چیز اٹھاتا ہے, انجوائے کرنا چیز کو, سمجھنا اور بات ہے, رومانٹسائز کرنا بڑی اچھی بات ہے, لیکن سیکھا کیا آپ نے, وہ چیز آپ کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے, اور وقت پہ آپ کو یاد آتی ہے جب آپ زندگی میں ایسی کوئی کام, ایسی کوئی بات کرتے ہیں تو دے کم فور یور ریسکیو. اب اس جنریشن کو سمجھنا ہے کہ اوپر والے تو کام ختم ہو گیا, اب اس جنریشن نے, یہ جنریشن جو ہماری ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے, کیوں کہ یہ پیسہ کما رہے ہیں, دے آر سیٹنگ ایٹ دی ہیلم آف دی افیئرز, ناٹ دا اولڈر جنریشن جو ان کے ہمارے پیرنٹس کی ہے, وہ ابھی ریٹائرڈ ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے, لیکن وہ بہت پہلے ریٹائر ہو گئے تھے کیونکہ انہوں نے نئی کوئی چیز کی ہی نہیں. جس زمانے میں لوگ ٹریول کرتے ہیں 60-70 سال کے زمانے میں, ہمارے تسبیح پکڑ کے ساری زندگی, اب آخری عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے, تو جو بھی انہوں نے کانسیپٹ مولویوں نے دیا ہے, کتاب تک قرآن خود نہیں پڑھیں گے, मौली साहब ने जो कहा है वो पकड़ लेंगे या किसी को यूट्यूब पे सुन लेंगे या एक आध क्लिप फड़ लेंगे और उसके बाद कहेंगे वाह वाह वाह, सर धुंधने शुरू हो जाएंगे और अपनी तरफ से रिलीजियस हो जाएंगे लेकिन बच्चे की ज़िंदगी अजाब कर देंगे, ठीक है जी, और औलाद की ज़िंदगी अजाब कर देंगे और दिन और फतवे कुफर के फौरन लगाना शुरू कर देंगे। इनमें से ज़्यादातर, जनरलाइज़ नहीं कर रहे, सब एक जैसे नहीं होते, 1% मैंने देखे हैं जो कि इंसानी हालत में भी हैं, ठीक, क्योंकि अब दर्द बढ़, आप उनकी तरफ से भी सोचें, हाइपरटेंशन बढ़ रही है, डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है, उठते हैं तो घुटनों में दर्द होता है, लेटते हैं तो दर्द होता है, हर वक्त लगता है कि हमारी कोई वैल्यू नहीं रही, हमारी कोई इज्जत नहीं है, हमें ऐसे नहीं पूछा गया, वैसे नहीं कहा गया, उनकी तो अपनी एक ज़िंदगी है, छोटे बच्चे ने मुझे, बच्चे के बच्चे ने मुझे ये कह दिया, तो ऐसी बातों पर मैंने सब ड्रामा देखा है, रोज़ देखता हूँ, इर्द गिर्द रोज़ होता है, ठीक है। हम जितने बड़े फ़नकार हैं और हम जितने बड़े अजीम इंसान हैं हमें बहुत अच्छी तरह पता है, इसका मतलब ये नहीं है कि यू डोंट रिस्पेक्ट देम, यू डोंट लव देम, यू डोंट केयर फॉर देम, ऑल ऑफ दैट। इसीलिए रब जो आपको जानता है उसने कहा माँ बाप पर एहसान करो। किताब को गौर से पढ़ें, लफ्ज़ एहसान है, एहसान एहसन से है, जो भी खूबसूरत तरीन तरीके से चीज़ की जा सकती है करो, क्योंकि उनको अब तुम्हारी समझ नहीं आएगी, ना उनको तुम्हारे चैलेंजेस समझ नहीं आएंगे, लेकिन जो भी उन्होंने किया उसके हिसाब से उनके साथ बहुत बेहतर सलूक करो। ये नहीं कहा गया कि उनकी हर बात मानो, ठीक, ये भी नहीं कहा, उनको हैंडल करने का कहा गया है और अच्छे से अच्छे तरीके से हैंडल किया जाता है और वो आपको भी पता है, हमें भी पता है, और प्रैक्टिकल रहना है। रब आपको अजाब में और तकलीफ़ में, जस्ट बिकॉज आप कॉन्शेंशियस हैं, जस्ट बिकॉज आप हेल्पफुल हैं, जस्ट बिकॉज आप के जज्बात हैं उनके लिए, तो आप दे कांट टेक यू फॉर अ राइड। आपने चीज़ों को हैंडल करना है, संभालना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। प्यार भी करना है, जज्बात में काबू भी रखना है, प्रैक्टिकल भी उनको रखना है, हेल्प भी करनी है, जो कुछ आप कर सकते हैं सब रखना है। असल चैलेंज आपकी जो अगली जनरेशन है इसको हैंडल करने का इशू है। इस जनरेशन को आप अपनी मर्जी से हैंडल नहीं कर सकते अगर आप एडेप्टेबल नहीं, अगर आप खुद सोशल मीडिया की आपको कुछ समझ नहीं, अगर आप इनके चैलेंजेस आप नहीं समझते। मेरे कई दोस्तों के बच्चे धैर्य हो चुके हैं, यानी वो खुदा को नहीं मानते, प्रैक्टिकली भी नहीं मानते, एक्शंस भी नहीं मानते, रिचुअल्स में भी नहीं मानते, लेकिन आप ज़बरदस्ती उनको देसी बंदों से मिलवा के बेटी की भी शादी कराना चाहते हैं, बेटे की भी, और झूठ मूठ का उनको शलवार कमीज ही पहनाते हैं, ज़ोर ज़बरदस्ती से उनको नमाजों के लिए भी ले जाते हैं ईद की या जुम्मे की, फाइन सब ठीक है, लेकिन आपके पास उनके सवालों के जवाब नहीं। ये आपको शादी से पहले सोचना चाहिए था कि मैं एक अधूरा इंसान, मैं एक एंटिटी पे बिलीव करता हूँ जिसका बिलीफ सिस्टम मेरा बना ही नहीं। कल मेरी बच्ची, मेरा बेटा मुझसे सवाल पूछता है रब के बारे में, मैं उसको किसी बंदे के पास भेज देती हूँ जो कि यहीं का होम ग्रोन स्कॉलर है, इंग्लिश बड़ी अच्छी बोलता है, अरबी बड़ी अच्छी बोलता है, लेकिन जहन का बच्चा है छोटा, जिसका लाइफ के बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसने जज्बात का इस्लाम और उसके पास कुछ विर्द है, और वो जब तकलीफ मुसीबत परेशानी में आता है तो उमरा करने चला जाता है या जाती हैं और ज़्यादा सख्ती पर आ जाती हैं, लेकिन वो मसले को हल नहीं करती। दुनिया का मसला दुनियावी तरीके से इल्म से हल होगा, बर्दाश्त से, सब्र से, कम्युनिकेशन से हल होगा, वरना ये अदालतों में जाके और लंबे काम होंगे, फिर फॉरेंसिक अकाउंटिंग होगी और बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो जब आप चीज़ों को डील नहीं करते, इंसानों के इमोशंस के साथ डील करना, रिस्पॉन्सिबल होना, कंपेटिबिलिटी इंसानों में ढूंढना, वरना ये सारी चीज़ें हेलो हाय में और इंग्लिश में घूम जाएंगी, ठीक है जी, घूम का है, गुम नहीं, ये घूमते घुमाते रहते हैं, तो ये सब कुछ हो जाएगा। तो इसीलिए पहले तो ये काम करने से पहले बेसिक चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए जो 99% पेरेंट्स नहीं करते, ठीक, एक बात। दूसरी बात, आप सब, हम जैसे हमारे वाले कहते थे मौलवी साहब मस्जिद में जाके पढ़ा देंगे, वो ऐसी सोटियाँ मारते थे, उनकी जो लाठें हैं ना, उनके जो निशान होते थे कमर पर, बड़े लंबे अरसे तक जाते थे। इसीलिए एक वक्त के बाद जब हमने एक दफ़ा कुरान ख़त्म कर दिया, क्योंकि हमें ख़त्म करना होता है, फिर हम छुप छुपा के हॉकी खेलने चले जाते थे कि उसके ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, कम अज़ कम फिज़िकल फिटनेस तो हो जाएगी, बाबा जी की मार से जान छुटेगी हमारी। मोज़े पहन के आ जाते थे, जराबें सीधी करके, मोज़े समझते हैं आप लेदर के होते हैं, और उसके बाद ताकि वज़ू उसमें मसा किया जा सकता है अपनी आसानी के लिए, और अरबों से रिलेट करने के लिए ये चीज़ें की जाती हैं। और बाद में फौत हुए, नॉट टेकिंग एनी थिंग फ्राम हिम, कह रहे थे जी बड़े साबिर हैं, शाकिर हैं, कुछ नहीं है, बड़ी मुश्किल से गुजारा करते हैं, बैंक में से इतने पैसे निकले कि लड़ाई शुरू होगी गांव में।
12: और यहाँ आज के हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम होता है जी। दिस इज़ आज़ाद साइनिंग ऑफ। यू कैन ऑल्सो लिसन टू आर
16: रेडियो स्टेशन एट www.radioazad.us. इसके अलावा अगर आप पोएम सुनना चाहते हैं, नज़में सुनना चाहते हैं, तो आप साउंड क्लाउड पे जा सकते हैं, मिक्स क्लाउड पे. स्पेशली बताना ज़रूरी है उन तमाम लोगों को जो शोज़ की रिकॉर्डिंग या अपने फेवरेट शोज़ की रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं अपने टाइम के ऊपर. आप लोग मिक्स क्लाउड पे जाके रेडियो आज़ाद को सर्च कीजिए और हमारे शोज़ वहाँ पे आप उनकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं. और ये तो आपको मालूम ही है कि जिन लोगों के पास आईफोन ऐप है, एंड्रॉयड है, ब्लैकबेरी है, स्मार्टफोन्स हैं, वो लोग हमें हमारे आईफोन ऐप के थ्रू सुन सकते हैं जो है रेडियो आज़ाद. दुआ में याद रखिएगा, ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे. और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा. खुदा हाफिज़.
17: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
18: Inspire FM.
19: Inspire 105.1 FM.
20: Hair loss, acne, scarring, eczema, joint pain, keloids, anti-aging. Whatever the concern, your treatment should start with medical expertise. Aesthetics Central Luton, a medical clinic specializing in regenerative medicine, advanced aesthetics and doctor-led procedures from PRP, PRF, GFC and exosomes to skin pen microneedling, peptide facials, chemical peels, laser hair removal, joint repair, blood tests. 8 years of success and over 200 five-star Google reviews. A beautiful new location with free on-site parking. Your private medical care has never been easier to access. Visit us at Aesthetic Central.
21: Need a ride? Village Taxis have you covered. Going to the airport, station, work, hospital or school? Call Village Taxis on Luton 24 24 24 for a quick, reliable service. New drivers wanted. Get registered today and join the Village Taxis team. Serving Luton, Central Beds, TfL, Wolverhampton, Hertfordshire and beyond. Taxi rental also available. Download our easy-to-use Village Taxis app or call 01582 24 24 24 to book your ride today. Village Taxis, your local taxi company.
22: When your future depends on the right legal team, choose M&K Solicitors, trusted by families across the UK. With over 20 years experience, they're one of Luton's most respected law firms, known for strong results and outstanding client care. From immigration and family law to property, personal injury and clinical negligence, their expert team is here to help. M&K Solicitors offer free consultation by appointment or visit the Friday free advice surgery from 2:30 to 5 p.m. Call 01582 732 503.
23: Salam.
24: Every day, Allah invites us to stand before Him. 5 moments to leave the world behind, to find peace, to seek forgiveness, to pour out our heart to the one who knows it better than we do. But how well do we truly know the prayer that defines our faith? Join Brother Sabir and Mufti Salman and Rehan on Inspire FM's brand new Salah series as they explain the beauty, wisdom and practice of Salah through ways we've never imagined. Listen live every Friday, 5 till 6 p.m. or catch up anytime on the Inspire FM app, inspirefm.org or YouTube and Facebook. The Salah series on Inspire 105.1 FM.
25: Are you looking for a prompt let and comprehensive property management by property professionals? If so, relax and let a safe, registered agent take care of all your property matters. Marigold Residentials believe in 100% customer satisfaction and aim to provide quality service at very competitive prices. Why not also let us take care of your property sale? We're now a proud member of the National Association of Estate Agents. We also advertise in local papers free of charge. Visit us at 251 Dunstable Road or call us on 617-617. Terms and conditions apply.
26: Rishta Networking is back in a brand new location at the Amberley Gardens Marquee in Bedford. If you're looking for a spouse in a respectful, halal environment, join us for an organized matrimonial networking event designed for serious, marriage-minded Muslims. You'll have the chance to meet up to 50 potential matches in a safe, structured and comfortable setting and also enjoy a delicious three-course meal. Join us on Saturday, 12th of September from 11:30 a.m. to 4:30 p.m. at the Amberley Gardens Marquee in Bedford. Limited seats are available, so register now at Rishta networking.co.uk.
27: From the studios of Inspire FM, the time is now 12:30.
12: बचपन से सुनते आए हैं ये नहीं कहना वो नहीं करना सवाल नहीं पूछना. اور پھر اسی روش سے ہمارے ذہنی اور معاشرتی مسائل الجھتے چلے گئے. ہمارے مسائل ہمارے حالات سے نہیں ہمارے خیالات سے پیدا ہوتے ہیں, اور خیالات درست کیے جا سکتے ہیں. میں ہوں آزاد, اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم سب آزاد ہو سکیں اپنے ہی پیدا کیے ہوئے مسائل سے, تو بات کیجیے, کیونکہ اب بول کے لب آزاد ہیں تیرے. Only on Inspire FM.
13: Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth, and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very, very warm welcome to the show. Sun rahe hain ji aap, bol ke lab azad hain tere.
14: Aur usse mujhe apna wo scene yaad aa jata hai jab Dubai mein.

0: वाले, लेकिन वो कुछ नहीं करते। तो मैं, एक साहब आए, मैं अपना सामान, कुछ चप्पल लेने के लिए, कोई भी चीज़ निकालने के लिए उठा, तो उन्होंने, वो भी कुछ अपना सामान लेने के लिए ऊपर से कोशिश कर रहे थे, और मेरा सामान मेरे सर के ऊपर पड़ा हुआ था, वो उसमें जो कैबिनेट होता है। तो मैं उठा तो वो कहीं अपना सामान उसी कैबिनेट में से निकाल रहे थे, तो उनकी बगल जो थी ना, मेरी नाक के कहीं करीब आई, और उसके बाद फिर चिरागों में रोशनी ना रही, क्योंकि हम चकरा कर अपनी ही सीट पर बैठ गए। और वाहिद चीज़ जो मेरे मुंह से उस वक्त निकली वो, क्योंकि आप जहाँ के होते हैं एक्चुअल चीज़ वही आपकी निकलती होती है। अंग्रेजी आप भूल गए, फारसी, पश्तो, पंजाबी, सारा कुछ मैं भूल गया, और मेरे अंदर से एक आवाज़ आई, मुंह से भी निकल गई, ओ जालमा, मार सुटी आई। क्या करें फिर, हम बेचारे कोशिश करते हैं, हेंगे और फटकड़ियां कम किया करो। और फटकड़ी, अलम, ALUM, अलम, रंग बरसे और अलम तरसे, यही वाले फिर हमारे मसले हैं कि जी सबको रंग बरस रहा है, लेकिन हम, अलम जो है वो तरस रहा है कि जी हम पे भी कोई रंग बरसे।
1: तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया साथ रहने का, अपने सवाल पूछने का, अपने अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू साथ साथ हमको देने का। जैसे हमने आपसे वादा किया था जी कि ये फ़न लिस्नर आज़ाद शो होगा, तो हम आपका जो फ़न है वो साथ साथ हम लेकर फिर रहे हैं, आप सिर्फ लेने वाला बनना है। आपने फ़न जो है ना, अपने अपनी हाथ जो है कंट्रीब्यूट करने वाला जो हाथ है, लेने वाला नहीं, देने वाला हाथ आगे बढ़ाइए, और देते आप आएंगे देने, लेकिन थाली साफ करके हम उसमें कोई अच्छी सी चीज़ आपको डाल कर देंगे। 9725019390 को मेहरबान हमारे साथ करते हैं, उनसे बात। रेडियो आज़ाद, यू ऑन द एयर।
2: सलामकुम
1: जी, वन सलाम।
2: आप इस फेज ऑफ लाइफ में अभी हैं, आपको लगता है कि लोग अभी भी किसी एक दो चीजों पे आपको मिसअंडरस्टैंड करते हैं?
0: हाँ जी, देखें लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना, इंसान अपनी समझ के मुताबिक समझता है, वो अगर उसको सीधी सच्ची सादी बात की समझ ही नहीं है, वो जिसको सीधी सच्ची और सादी समझता है उसके लेंस से मेरी बात को सुनता या समझने की कोशिश करता है। इसीलिए मैं, भाईजान शेक्सपियर जो थे वन ऑफ अ काइंड, उनकी वो बात कि आई एम आंसरेबल फॉर व्हाट आई सेड नॉट व्हाट यू अंडरस्टूड। तो बहुत सारे लोग बहुत सारी बातों को अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो चीज़ उन्होंने देखी नहीं, कभी महसूस नहीं की, कभी उनके साथ हुई नहीं, तो मैं ये कैसे एक्सपेक्ट करूं कि वो चीज़ें भी समझ जाएंगे? तो इदराक की सीढ़ियां आहिस्ता आहिस्ता लोग चढ़ते और समझते हैं, आप उनके साथ लंबे अरसे तक रहते हैं, हर आदमी आपको वो कलर देता है जो ज़िंदगी और दुनिया उसने देखी, तो वो जैसे उसको जो रंग नज़र आता है, उसकी आंखें जैसी हैं, वो जैसे कलर को परसीव करता है, वो वैसा रंग आपको देता है। आगे जाकर कहीं ना कहीं वो उसकी एक्सेप्शन बनाएगा, तब तक आप उसकी ज़िंदगी में और सोच में रूल हैं, लेकिन लॉन्ग रन में भी अगर वो ऐसे ही करता रहा और आप एक्सेप्शन हैं और आप डिफरेंट हैं और उसको फिर भी उसी कैटेगरी में डाल रहा है, तो कुछ अरसे के बाद वो आपके साथ और आप उसके साथ नहीं रह पाएंगे। तो इसी तरह ज़िंदगी में घोड़े और गधे अलहदा होते हैं, इसी तरह ज़िंदगी में कौन आपके साथ है और किसने रहना है और किसने नहीं रहना, इट इज़ परफेक्टली फाइन टू बी मिसअंडरस्टूड। बल्कि कई लोग अभी तक बहुत सारी बातें जो कभी उन्होंने सिर्फ किताबों में, फिल्मों में, नॉवेल्स में या किसी से सुनी सुनाई हैं, उसके मुताबिक वो चीज़ों को लेते हैं, ना कि उस चीज़ों को प्रैक्टिकल लें, ये जानने के बावजूद कि आई एम इन द बिजनेस ऑफ मेकिंग सेंस हमारी लाइन है, और ये बताने के बावजूद कि मैं कोई भी चीज़ बैलेंस से बाहर ना आपसे कहता हूँ ना करता हूँ, लेकिन उनका बैलेंस, उनकी बात, उनकी सोच, वो एक टोटली और उनकी अपनी कॉन्टेशन है, उसके मुताबिक अगर वो देख लेते हैं, सुन लेते हैं, इतना भी बहुत है। वक्त पे जाके अपने अपने जर्नी के मुताबिक, अपने अपनी जो ज़र्फ़ है उसके मुताबिक, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें समझ आएंगी, कईयों को इससे बहुत ज़्यादा आ जाएंगी, कई को इससे लीड लेके कोई और ऐसी बात समझ आ जाएगी जो शायद एंगल अभी मिसिंग है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों के साथ होती हैं, और लोग बहुत से भी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि अक्सर मैंने जब देखा है, जब मैं लोगों से बात कर रहा होता हूँ, जब मैं उनकी आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा होता हूँ, तो मुझे उनकी आंखों के अंदर उनके ब्रेन का कनेक्शन बिल्कुल नज़र नहीं आता। ये सब नज़र आ सकता है क्योंकि वो सिर्फ आंखों से आपको देख रहे हैं, लेकिन उनका बिलीफ सिस्टम सुन नहीं रहा, वो समझ नहीं रहे, वो अपनी बात और अपना मसला, अपनी तकलीफ और अपनी अगला जो उसने क्या काउंटर आर्ग्यूमेंट देना है उस पर उनका ध्यान है। दे आर नॉट लिसनिंग। ये हमतन गोश होने वाली बात वैसे किसी ने नहीं की, दैट आई एम ऑल ईयर्स, तो इसका मतलब है मैं पूरे का पूरा दिलो जान से कान बन के आपकी बात सुन रहा हूँ। उस सुनने से ही, यही एक्टिंग है, यही अंडरस्टैंडिंग है कि आप सुनने से ही आपके दिल में जो भी जज्बात पैदा होते हैं उसके मुताबिक आपके अंदर सच, या ये सच है या नहीं है। तो एक आदमी सच सुनने, सच बोलने के लिए आया ही नहीं है, सच की

0: کل کے سیشن کے آخر میں دو باتیں میرے ذہن میں تھیں جو رہ گئیں، وہ میں پہلے ذکر کر دوں. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین کے بارے میں، اس کے بعد پھر آگے چلیں گے. یہ ذرا سی کمپلیکیٹڈ چیز ہے، لیکن میرے خیال سے آپ لوگ کافی اسمارٹ ہو، آپ سمجھ جاؤ گے. ٹھیک ہے، رب کے بارے میں میں نے کہا تھا کہ اس میں پانچ معنی ہیں، کسی کو یاد ہے کیا تھے؟ مالک، سید، منعم، مربی، قیم. اچھا، پانچ میں سے نا اس کو ہم تھوڑی تقسیم کر دیتے ہیں. ان میں سے دو کا تعلق اتھارٹی کے ساتھ ہے، باقی تین کا تعلق رحمت کے ساتھ ہے. پانچ معنی ہیں لیکن دو کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اتھارٹی کے ساتھ، اقتدار کے ساتھ. وہ دو کون سے ہیں؟ آپ خود گیس کرو. مالک اور سعید کا تعلق اقتدار کے ساتھ ہے. لیکن جس نے خیال رکھنا ہے، جس نے تحفہ دینا ہے، جس نے نشو نما کرنی ہے، مربی، منعم، قیم، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ رحمت کے ساتھ. بات سمجھ میں آ گئی؟ اوکے. اب آگے جا کر مالک کا لفظ آیا تھا، مالک یوم الدین، اور مالک کی دو قراءات تھیں، یاد ہے آپ کو؟ مالک اور ملک. اس میں سے ایک مالک تو ویسے بھی رب کے ساتھ تھا، اور ملک اتھارٹی کے یا جو سید کے قریب ہے. ملک اور سید، سمجھ رہے بات؟ یعنی رب میں پانچ معنی ہیں لیکن اس میں سے دو معنی مالک اور ملک میں بھی ہیں، لیکن تین مسنگ ہیں. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کون سے تین مسنگ ہیں جو رب میں ہیں، جو مالک میں اور ملک میں نہیں ہیں؟ منعم، مربی، قیم. تو وہ تین مسنگ کیوں ہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں تین مزید کیوں ہیں اور وہاں تین کم کیوں ہیں؟ وہاں بات ہو رہی ہے انصاف کی. کس دن کا مالک ہے؟ مالکی یوم الدین. یہاں بات ہو رہی ہے تمام عالمین کی، رب العالمین. وہ آخرت کی بات ہے، آخرت کے کورٹ والے دن کی بات ہے، اور یہاں پر دنیا کی بات ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ کا اقتدار بھی ہے لیکن وہ ہر وقت ظاہر نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کی ملکیت بھی ہے، ہر وقت ظاہر نہیں کرتا. مجھے امپریشن ملتا ہے میرا بھی کوئی کنٹرول ہے، میرے منہ میں جو بات آئے میں کہہ سکتا ہوں، وہ روکتا نہیں ہے. روک سکتا ہے؟ روکتا نہیں ہے. میں جو دیکھنا چاہوں دیکھ سکتا ہوں، وہ میری آنکھوں کو بند نہیں کرتا. ہے تو وہ مالک، ہے سید، لیکن اس کو وہ ایکسرسائز کرنے سے مجھے نظر نہیں آتا کہ وہ اس کو مجھے کنٹرول کر رہا ہے. اور وہ کیوں نہیں کر رہا؟ فوراً پکڑ کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ منعم، مربی، قیم، الرحمن، ان ساری چیزوں کی وجہ سے مجھے تھوڑی سی آزادی دی ہوئی ہے. قیامت کے دن کیا ہونا ہے؟ لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. اس دن تو کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. مہطعین رؤوسہم، یہاں تک کہ مجرموں کے بارے میں، اللہ ہمیں مجرموں سے میں سے نہ بنائے. سورۃ القمر میں بتایا ہے کہ وہ ان کو پکارا جائے گا ایک ایسی چیز کی طرف جو بہت ڈرونی ہوگی. الا شیء النکر، یوم یدعو الداعی الا شیء النکر، ایسی چیز کی طرف بلایا جا رہا ہے جو بہت ڈرونی ہے. اچھا، اگر میں کہیں آگ دیکھوں اور وہ قریب ہے، کوئی جانور دیکھے، کوئی انسان دیکھے، کس طرف بھاگے گا؟ اللہ کی مرضی کے خلاف قانون اور پوری پوری سوسائٹیز ہونے کے باوجود وہ ان کا مربی اور ان کا منعم اور ان کا قیم. اچھا، سوسائٹی کا جو لا ہوتا ہے نا، اس کے لیے بھی قرآن میں ایک لفظ ہے. پوری ایک جو اس کا آئین ہوتا ہے، اس کے لیے لفظ قرآن استعمال کرتا ہے دین. جیسے سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھا ایک سازش کے تحت، یعنی ان پر الزام لگایا کہ کب ان کے بیگ میں سے نکلا، ان کے بستے میں سے نکلا. تو کہا، اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتایا ایسا کیوں کیا انہوں نے. اس لیے کیا، ما کانا ان یاخذ اخاہ فی دین الملک. ان کے لیے ممکن نہیں تھا اپنے بادشاہ کے قانون کے تحت کہ وہ ایسے ہی اپنے بھائی کو رکھ لیتے. اریسٹ کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا. تو جو بادشاہ کا قانون تھا نا، اس کے لیے کیا لفظ استعمال ہوا سورہ یوسف میں؟ دین. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، جب عالمین کی بات کی گئی ہے نا، تو تمام عالم، تمام سوسائٹیز، تمام سولیزیشنز، ان تمام کے دین الگ الگ تھے، ان کے قانون الگ الگ تھے، لیکن اللہ پھر بھی ان کا رب رہا. फिर भी उन पर निमते करता रहा। लेकिन एक दिन आ रहा है जब वो, आप किसी भी कानून से आए हो, किसी भी आइन से आए हो, एक दिन सबको एक ही कानून के तहत जज किया जाना है। वो क्या है? मालिक यौमी अद्दीन। अब सख्ती हो गई। जब सख्ती हो गई तो नरमी वाले तीन मायने निकालने पड़ेंगे। तो यहां पर रब और वहां पर मालिक की बात समझ में आ गई। तो ये चीज, ये भी बारीक सा तनासुब है कि रब के साथ अलआलमीन और मालिक के साथ यौमिद्दीन, सुबहानअल्लाह। अच्छा, अब आके मैंने आखिरी बात आपसे रात की थी और कल की थी दोपहर को कि अब इन तमाम बातों का जो अल्लाह ताला ने इन तीन आयात में कही है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानुर्रहीम मालिक यौमिद्दीन, अब इसका एक नतीजा निकलना चाहिए। और कुरान इस पहली सूरत में ना सिर्फ अल्लाह ताला अपना तारुफ करा रहा है, इन तीन आयात में तो अल्लाह ताला ने अपना तारुफ करा दिया, लेकिन इस पूरे कुरान का जो मकसद है ना, उससे भी हमारा तारुफ हो रहा है। कुरान की हर सूरत में बहुत ज़्यादा हिदायत हैं, लेकिन फातिहा में पूरे कुरान की हिदायत का खुलासा है। और उस खुलासे में से एक अहम बात यह है कि इंसान को खुद फैसला करना है कि वह अल्लाह ताला का बंदा बने, यानी शौरी तौर पे, और ख़ुद मुख्तार होके खुद ये फैसला करे। उस पे ये फैसला किसी की तरफ से मुसल्लत नहीं किया जा सकता। ला इकराह फितीन, दीन के मामले में आप किसी पे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, जबर नहीं कर सकते, फोर्स नहीं कर सकते। आप जितना भी बच्चे को फ़र्ज़ करें तरबियत कर लो, नमाज़ पढ़ो, नमाज़ पढ़ो, नमाज़ पढ़ो, नमाज़ पढ़ो, एक अभी उस पर नमाज वाजिब नहीं है, उसकी उम्र नहीं हुई, एक दफ़ा उसकी उम्र हो जाए और फिर वो आपके डांटने डपटने से नमाज पढ़े, तो उसकी नीयत क्या थी? नीयत करता हूँ चार रकत नमाज अम्मी की वजह से, अल्लाह अकबर, यही नीयत थी ना? हमारे दिन ने क्या सिखाया? अमाल की बुनियाद, अमाल का दारोमदार किस चीज़ पर है? अगर आप किसी को फोर्स कर रहे हो तो उसकी नीयत अल्लाह की थोड़ी रही, नीयत तो आप थे ना, नीयत तो किसी का प्रेशर था। तो शुरू से ही अल्लाह ताला ने क्या कहा है, यहाँ तक कि अल्लाह, क्योंकि वो रब है, वो फोर्स कर सकता है, वो ज़बरदस्ती भी करा सकता है। पुलिस वाला आपसे गाड़ी रोड पे ज़बरदस्ती करा सकता है, आपको कहता है कि रुक जाओ तो आपको रुकना पड़ेगा, आपको इशारा करेगा रुको गाड़ी, आपको रुकनी पड़ेगी, स्लो करने को कहेगा स्लो करनी पड़ेगी। अल्लाह ताला भी इसी तरह आपको रुकवा सकता है, और अगर नहीं रुकोगे तो उसके साथ कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, उसका कोई ना कोई नतीजा उसी वक्त आपको उसका सामना करना पड़ेगा। लेकिन अल्लाह ताला ने इस निज़ाम में, इस दुनिया के निज़ाम में एक आज़ादी दी है, और उस आज़ादी से इंसान खुद अपनी आज़ादी से कहे इयाका नअबुदु, इसीलिए कहा उबुदु नहीं कहा, उबुदु कहा होता अच्छा आप इबादत करो, वो हुक्म होता अल्लाह ताला की तरफ से, लेकिन हमने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं इयाका नअबुदु। अल्लाह ताला ने अब हमारे अल्फाज को कुरान का हिस्सा बना दिया, हम तेरी इबादत करते हैं। ये भी एक अजीब बात हुई, पहले अल्फाज अल्लाह ताला की तरफ से हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन। इस आयत में अल्लाह ताला की तरफ से आयत तो है, लेकिन अल्फाज किसके हुए? अगर हम कहें हम तेरी ही इबादत करते हैं तो किसके अल्फाज हुए? हमारे अल्फाज हुए। कुरान का एक बुनियादी मकसद क्या है? अल्लाह ताला और हमारे दरमियान एक बात हो रही है, एक मुकालमा हो रहा है, और अब हमें उस मुकालमे की शुरुआत हो गई है। अल्लाह ताला कुछ कहते हैं फिर हम कुछ कहते हैं, अल्लाह ताला कुछ कहते हैं फिर हम कुछ कहते हैं। जिस तरह आप किसी की बात सुनते हो और आप बात सुनने के बाद आपका रद्द अमल होता है ना, फिर आप उसका जवाब देते हो, आपके जहन में कोई बात आती है तो आप कहते हो, अल्लाह ताला आप हमें सिखा रहे हैं जब अल्लाह ताला कोई बात करते हैं तो आपके जहन में, आपके दिल में कोई बात आनी चाहिए और वो आपके मुंह से निकलेगी। तो जो बात नेचुरली मुंह से निकलेगी इस फातिहा के अंदर, वो क्या है? इयाका नअबुदु। अच्छा, तो ये पहली बात तो मैंने बता दी, जिस नतीजे पर इंसान खुद पहुंचे। यहाँ पर भी एक और, क्योंकि मैं अपने बारे में थोड़ी सी बात आपको बताऊंगा, ज़्यादा फिर बोरिंग हो जाएगी। मैं जब इस्लाम के बारे में सोच रहा था कि मैं मुसलमान क्यों हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स तो मेरे साथ थे नहीं उस वक्त न्यूयॉर्क में, कॉलेज में मैं कुछ ज़्यादा ही आज़ादी थी, तो सोचने का मौका मिला कि अगर मुसलमान हूँ भी तो क्यों हूँ, क्या इसलिए हूँ कि मेरे पेरेंट्स वालदैन मुसलमान हैं, मेरा जो दोस्त हिंदू है उसके वालदैन हिंदू हैं तो उस वजह से वो हिंदू है, तो वो तो कोई ईसाई फैमिली से आया हो तो वो ईसाई होगा, कोई यहूदी हो तो वो यहूदी होगा, मेरी फैमिली मुसलमान है, पाकिस्तान से हैं तो मैं मुसलमान हूँ, इसका इस्लाम के हक होने से तो कोई ताल्लुक नहीं हुआ। फिर दूसरी बात ये कि जो अल्लाह ताला को नहीं मानते ना, एक तो है कि मुख्तलिफ खुदाओं को मानते हैं, शिर्क करते हैं, फिर एक इल्हाद है। इल्हाद क्या है कि मैं एथीस्ट हूँ, मैं किसी खुदा को नहीं मानता। जो एथीस्ट होते हैं ना उनकी एक कॉमन उनमें एक मुश्तरक सोच ये होती है कि अगर वाकई कोई खुदा होता तो इतनी नाइंसाफ़ी कैसे होती। तुम कहते हो ये खुदा बड़ी मोहब्बत करता है, उसको अर्रहमान कहते हो, तो ये जो बच्चा कैंसर की वजह से मर गया, ये जो माँ मर गई कार एक्सीडेंट में, उसका बच्चा भी रो रहा है, ये कैसा अर्रहमान है, इसको रहमत कहते हैं? इस किस्म के खुदा को मानते हो तुम? और तो एक तरफ तो वो कहते हैं कि इसके अंदर इस खुदा के अंदर रहमत नहीं है, तुम कहते हो रहमत है, मुझे तो रहमत नज़र नहीं आ रही, उसकी हज़ारों मिसालें देते हैं। उसके बाद वो एक और बात भी करते हैं, वो कहते हैं तुम कहते हो कि इस खुदा ये जो है ये अदल का मालिक है, ये अदल करता है, मुझे तो कहीं अदल नज़र नहीं आता। जो लोग बिजनेस में चीटिंग करते हैं, झूठ बोलते हैं, रिश्वतें देते हैं, करप्शन करते हैं, वो आगे निकल जाते हैं। जो दयादारी से काम करता है, झूठ नहीं बोलता, रिश्वत नहीं करता, मिलावट नहीं करता, वो कहा क्या होता है उसके साथ, वो पीछे रह जाता है। जो अपने PhD पेपर में कहीं और से कॉपी करके इधर उधर से करके सबमिट कर देता है, उसको पेपर मिल जाता है, उसको डिग्री मिल जाती है। जो ओरिजिनल काम करता है वो पीछे रह जाता है। जिसको जिसके पास सिफारिश होती है वो आगे निकल जाता है, जिसके पास सिफारिश नहीं होती वो पीछे रह जाता है। तो यहाँ तो नाइंसाफ़ी की जीत होती है ज़्यादातर। तुम जितना भी कहते रहो कि ये अगर खुदा वाकई इतना इंसाफ करता है तो उसकी एक आम सी मिसाल है, अगर एक इंसान जानबूझकर गलत वजह से एक दूसरे इंसान का कत्ल करे तो उसकी क्या सज़ा होनी चाहिए? उसने एक जान ली है तो क्या होना चाहिए उसके साथ? उसकी भी जान लो। लेकिन अगर एक इंसान 100 लोगों का कत्ल कर दे, मुमकिन है कि नहीं? एक इंसान 100 लोगों का कत्ल करे, क्या सजा दोगे? ज़्यादा से ज़्यादा एक ही दफ़ा कत्ल करोगे ना। एक दफ़ा कत्ल करने के बाद उसके बाद आप क्या कर सकते हो? जाने उसने 100 ली, लेकिन आप तो उसको एक ही दफ़ा सज़ा दे सकते हो ना, तो ये इंसाफ थोड़ी हुआ। तो दो बड़े बड़े जो इश्काल, दो बड़ी शिकायतें आती हैं खुदा के कॉन्सेप्ट के खिलाफ, अल्लाह के खिलाफ। वो एक है कि ये तुम कहते हो कि ये रहमान है, इसमें रहमत कहाँ है, मुझे तो नहीं नज़र आती। और तुम कहते हो कि ये आदल है, ये इंसाफ करता है, मुझे तो इंसाफ नज़र नहीं आता। फिर इसके साथ एक और मसला खड़ा होता है कि अगर कोई भी एक रब को मान ले, एक इलाह को मान ले, जो हर मामले में उसमें कोई कोताही नहीं है, उसके इल्म में किसी चीज़ की कमी नहीं है, उसकी हिकमत में किसी चीज़ की कमी नहीं है, उसकी मोहब्बत में किसी चीज़ की कमी नहीं है, उसके अदल में किसी चीज़ की कमी नहीं है, क्योंकि अगर एक भी कमी किसी भी चीज़ में हो जाए तो वो खुदा नहीं हो सकता। बात वाजह है ना, क्योंकि अगर कमी हुई तो खुदा कैसा हुआ फिर, राइट? फातिहा में इस बात का जवाब है। फातिहा में अल्लाह ताला ने हमारे और अल्लाह के रिश्ते की बुनियाद अर्रहमान रखी, अलादल रखी। पहले अपना नाम बताया अल्हम्दुलिल्लाह, फिर बताया तमाम चीज़ें अल्लाह के बारे में सीखने के लिए पहली चीज़ क्या सीखनी पड़ेगी। पहला यानी पहला वस्फ अल्लाह का, पहली सिफत क्या थी फातिहा में? रब। रब यानी इस तमाम रिश्ते की बुनियाद, मेरी तमाम जिंदगी की बुनियाद, इंसानियत की कहानी की बुनियाद एक लफ्ज़ है मेरे और अल्लाह के दरमियान, वो क्या है? अल्लाह मेरा रब है। अब जब वो अपने आप को अर्रहमान कहता है ना, तो वो रब होने के दायरे के अंदर रहमत कर रहा है। और जब वो मालिक यौमिद्दीन होगा तो वो रब के नाते वो फैसला करेगा उस दिन। यानी इस असल रिश्ता मेरा उसके साथ किस चीज़ का है? मैं अब्द हूँ और वो रब है। अच्छा, इस रब ने क्या किया? उसने एक फैसला किया कि जो मेरी रहमत है ना वो दो तरह की है, एक जाहिर और एक बातिन। एक रहमत मैं दिखाऊंगा और एक रहमत मैं छुपाए रखूंगा, ये उसका फैसला है। अब क्योंकि वो रब है, उसकी पूरी अथॉरिटी, उसने ये फैसला कर दिया। अब उस फैसले के पीछे उसकी क्या हिकमत थी, क्या तुक थी? अगर वो मुझे सेंस समझा दे कि आपने क्यों किया कि कुछ रहमतें जाहिर हैं और कुछ रहमतें बातिन हैं, आप कहो कि किसी की बीमारी हुई है तो वो तो अजाब में है, लेकिन उसके पीछे भी कोई ना कोई छुपी हुई क्या है, रहमत है। वो मुझे नजर नहीं आ रही, अब मुझे नजर नहीं आ रही तो मैं खुदा से कहूं जरा मुझे भी दिखाएं जरा क्या रहमत थी इसके अंदर, मुझे तो समझ नहीं आ रही। हाँ, आप पहली बात भूल गए, क्या है वो आपके लिए? रब। और रब के होने के नाते उसको कोई प्रेशर नहीं है कि वो आपको समझाए कि मैंने ये फैसला क्यों किया। देखें, अगर जज या पुलिस वाला आपको रोकता है ना, तो आपको क्यों रोका मुझे, पता नहीं है मैं काम पे जा रहा हूं, समझाओ जरा क्यों रोका मुझे। आप क्यों इस तरह बात नहीं करते जज के साथ, टीचर के साथ, पुलिस वाले के साथ? क्योंकि क्या होता है उसके पास, उसके पास अथॉरिटी होती है, तो आप उसकी अथॉरिटी के अंदर सरेंडर हो जाते हो, राइट? अल्लाह ताला के पास एक अथॉरिटी है, उस अथॉरिटी के तहत उसने कहा है कुछ रहमतें तुम्हें नजर आएंगी, समझ में आ जाएंगी, कुछ रहमतें समझ नहीं आएंगी, लेकिन है रहमत फिर भी। सूरतुल कहफ में इसकी तरफ इशारा किया गया है, वो तीन वाकयात जो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हुए हैं सूरतुल कहफ में, वहां भी यही तो बात की गई है ना, रहमत मिन रब्बिक वमा फअलतुहु अन अमरी। ये सब अल्लाह ताला की तरफ से, तुम्हारे रब की तरफ से एक रहमत थी। मूसा अलैहिस्सलाम को वो जब तीन वाकयात हुए उनको रहमत नजर आई कि नहीं? वह तो नजर नहीं आई। बाद में समझाया क्या, ये क्या था, ये रहमत थी किसकी तरफ से? मिन रब्बिक। तो ये रहमत और रब का ताल्लुक समझ में जब तक नहीं आएगा ना, तब तक इंसान पूछता रहेगा तुम तो कहते हो और रहमान है, मुझे तो रहमत नजर नहीं आ रही। असल में तुम रब को नहीं समझे ना, इसलिए तुम्हें रहमत नजर नहीं आ रही, असल बात यह है। दूसरी बात यह है कि वाकई इस दुनिया में नाइंसाफी है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छे काम करने वाले लोग अच्छी जिंदगियां नहीं गुजारते हमेशा, और ये इस्लाम का दावा भी नहीं है। इस्लाम कबूल कर लो, जिंदगी आसान हो जाएगी, इस्लाम की हिदायत पर चल लो, कोई मुश्किल नहीं होगी तुम्हारी जिंदगी में, सेहतमंद हो जाओगे, फैमिली में कोई ड्रामा नहीं होगा, पैसे का मामला हल हो जाएगा, सेहत का मामला हल हो जाएगा, सोसाइटी का मामला हल हो जाएगा, हर तरफ से नेमतें आएंगी तुम्हारी तरफ, बस अल्लाह की बात मान लो। अच्छा जी, मैं मानने को तैयार हूँ। क्या मिसालें हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखो। अरे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बात मानी, घर से निकाले गए, फिर आग में फेंके गए, फिर बच्चे को ज़िबा करने का हुक्म किया, फिर सहरा में ये अच्छा बड़ा ज़बरदस्त रिलीजन है, इसको आप फॉलो करें, आपकी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। अच्छा, याकूब अलैहिस्सलाम की तरह उनके साथ क्या हुआ था? औलाद छीन ली गई, सालों साल रोते रहे हैं, वो भी अल्लाह के नबी। तो आपकी कोई, आप कोई प्रोडक्ट, कोई चीज़ बेच रहे होते हो ना, तो आप बेनिफिट्स देते हो, ये आप ये लें तो आपका ये फ़ायदा होगा। इस्लाम की अगर आप सेल कर रहे हो, किसी को आप कन्विंस करना चाह रहे हो कि भाई आप इस्लाम में आ जाएं, क्यों आऊं, क्या मिलेगा मुझे इस्लाम में आने से? और आपको ज़िंदगी जो है ऐसी ज़बरदस्त हो जाएगी, आप सुकून आएगा सारी ज़िंदगी में। अच्छा, किताब दिखाओ अपनी, किताब खोल के देखिएगा, जिन लोगों ने इस्लाम को फॉलो किया उनकी ज़िंदगी आसान है, मुश्किल है? मुश्किल, और फिर और मुश्किल, और फिर और मुश्किल, और फिर और मुश्किल। ये कैसी सेल है? और सहाबा के बारे में सोच लो, जिस सहाबी ने इस्लाम कबूल किया है उसकी ज़िंदगी इस्लाम से कबूल करने से पहले, उसकी फैमिली है, उसकी अच्छी भली ज़िंदगी है, आराम से ज़िंदगी गुजर रही, दोस्त हैं, अहबाब हैं, सोसाइटी है, जैसे ही वो मुसलमान होता है क्या होता है, उसकी फैमिली उसकी दुश्मन, उसके दोस्त उसको छोड़ गए, बिजनेस वाले उसके साथ बिजनेस नहीं कर रहे, बात उससे कोई नहीं कर रहा, उसे पागल कहा जा रहा है, उसको गालियाँ दी जा रही हैं, उसको सड़कों में मारा जा रहा है, उस पर थूका जा रहा है, सिर्फ एक फैसले की वजह से, इस्लाम कबूल करने की वजह से। यानी ये एक फैसला जिंदगी को आसान नहीं बना रहा, लगता है कुरान की रूह से कि जब कोई ये फैसला वाकई दिल से कर लेता है ना, तो उसकी ज़िंदगी आसान नहीं होती, उसकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो ये नतीजा हल्के दिल वाले लोगों के लिए नहीं है। अगर वाकई ये बात समझ में आ गई है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमान अर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन, तो सोच समझ के ये फैसला करना पड़ेगा, इय्याका नअबुदु। और क्योंकि ये फैसला बहुत मुश्किल है और इसके साथ बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो फिर जो जहां जहां से इंसान को सपोर्ट मिलती थी ना दुनिया में, जिंदगी में, हो सकता है वो सारे रास्ते बंद हो जाएं। इसीलिए अब कहीं से सपोर्ट नहीं आएगी, तो जिसकी वजह से ये फैसला किया है उसी से सपोर्ट लेनी पड़ेगी। तो अब समझ में आया कि इसके साथ क्या बात जोड़ी हुई है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन, ये दोनों चीज़ें आपस में साथ इसीलिए जुड़ी हुई हैं क्योंकि ये फैसला आसान नहीं है। ये कहना आसान है, ये फैसला आसान नहीं है। अब हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज में हम हर नमाज में इसी दावे की तरफ वापस आते हैं जो इस्लाम की बुनियाद है। एक तरह से जो किसी के मुसलमान होने का जो सफ़र है ना, उस सफ़र का खुलासा हम हर फातिहा में हर रकात में पढ़ते हैं। कहाँ से बात शुरू हुई थी, किस नतीजे पर हम पहुँचे, किस लिए हम मुसलमान हुए, इय्याका नअबुदु, और मुसलमान हुए और ये इबादत हमने कबूल की। ये इबादत जब हमने खुद ही अपने तौर पर आकर कबूल की तो फिर हमें इस बात का भी इतराफ़ करना पड़ा कि ये हमारे बस की बात नहीं है, इसमें बहुत सारी मुश्किलात होती हैं और इसमें बस अल्लाह ताला आप ही हमारी मदद कर सकते हैं, वो इय्याका नस्ताईन। ठीक है, तो ये बात, अब इसके बारे में भी कुछ चीज़ें हम ऑब्ज़र्व करते हैं। एक तरफ अल्लाह ने रब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था और मैंने कहा था रब ऐसा लफ्ज़ है जिसमें रिश्ता होता है, तो एक तरफ रब, दूसरी तरफ अब्द, दूसरी तरफ अब्द। अब अब्द के लिए यहाँ पर हमने देखा कि फ़ेल का इस्तेमाल हुआ है। पहले भी फ़ेल और इसम के बारे में बात हुई थी, थोड़ी सी दोहरा लेता हूँ ताकि आपका जहन फ्रेश हो जाए। फ़ेल में होता है माजी, हाल और मुस्तकबिल, और इसम में क्या होता है, हमेशगी, दवाम, हमेशा के लिए। अल्लाह ताला ने अपने लिए रब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया इसम, लेकिन हमारे लिए हमने अब्द का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया इसम, हमने क्या इस्तेमाल किया, फ़ेल। फ़ेल में क्या होता है, या माजी या हाल या मुस्तकबिल, और फ़ेल ऐसी चीज़ है जब आप कर रहे होते हो तो होती है, जब नहीं कर रहे होते तो नहीं होती। जैसे खा रहा हूँ, खा रहा हूँ का मतलब है जब खा रहा हूँ तो हो रहा है, जब नहीं खा रहा तो नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं कहूँ ये खाता पीता है, अब मैंने इसम इस्तेमाल किया ना, अब वो सो भी रहा है तो खाता पीता है, समझ रहे हैं बात। हमने जब अपने लिए फ़ेल इस्तेमाल किया तो हमने एक बात का एक बात का हमने इतराफ़ किया यहाँ पर, और वो क्या है कि हमारी इबादत में ऊंच नीच होती है, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी बिल्कुल ना होने के बराबर, कभी बहुत ज़्यादा। जैसे फ़ेल में भी ऊंच नीच होती है और फ़ेल में हमेशगी नहीं होती। हमारे लिए हमसे हमेशा की इबादत मुमकिन नहीं है। आप सो रहे हो तो इबादत नहीं कर रहे, आप काम कर रहे हो तो अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से कह दिया हलाल कमा रहे हो तो काम भी कर रहे हो तो इबादत है। अपनी फैमिली के लिए आप ग्रोसरीज करने, दूध और ब्रेड वगैरह लेने जा रहे हो, हलाल रोज़ी से अपनी फैमिली के लिए लेने जा रहे हो, तो वो भी इबादत है। लेकिन उस वक्त आप शौरी तौर पर इबादत नहीं कर रहे, वो तो आप सिर्फ दूध लेने जा रहे थे, ब्रेड लेने जा रहे थे, रोटी खरीदने जा रहे थे, राइट। तो यहाँ पर इय्याका नअबुदु में अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर बहुत रहम किया है कि हमने ये दावा नहीं किया कि हम हमेशा हर लम्हे आपकी इबादत में होते हैं। ये दावा बहुत बड़ा हो जाता, उस पर हम में से कोई पूरा नहीं उतर सकता था। लेकिन हम आपकी इबादत करते हैं, हम आपकी इबादत कबूल करते हैं और करते हैं, इसमें थोड़ी रूम आ गई, करते भी हैं और कभी कुछ ढीले भी पड़ जाते हैं, फिर करते भी हैं, फिर कभी कोताही भी होती है, फिर करते भी हैं। और इस जो वसत है इसके अंदर, ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी रहमत है। तो यह है इय्याका नअबुदु में फ़ेल का इस्तेमाल। ओके, हाँ, अगर तुम इबादत करो कहा जाता, वो ये बात तो मैंने पहले कह दी थी, अगर कहा जाता करो इबादत तो यह हमारा फ़ैसला ना होता, अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म होता। और यहाँ बात हुक्म की नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है आपकी अपनी कमिटमेंट की। अब यहाँ हम खालिसतन तेरे बंदे हैं, अगर ये कहा होता, यानी अगर कहा होता नहनु इबादल लका खासा, हम तेरे बंदे हैं खास, सिर्फ नहनु इबादल लका खासा, तो ये दावा बहुत बड़ा हो जाता, क्योंकि इसका मतलब है मेरी जबान से कभी कोई ऐसा लफ्ज ना निकलता जो आपकी इबादत के साए में ना हो, मेरे कदम कभी किसी तरफ ना चलते जो आपकी इबादत के तहत ना हो, मेरे हाथों से कभी कुछ ना होता, मेरी आंखों से कभी कुछ ना होता जो इबादत का तकाजा ना पूरा कर रहे हो, क्योंकि मैं हर लम्हे क्या हूँ, अब्द हूँ। ये तो मेरे लिए मुमकिन है नहीं, ये तो मुमकिन नहीं है, तो इय्याका नअबुदु। अच्छा, अब इय्याका नस्ताईन की तरफ।
1: Subscribe now to the Bayana YouTube channel to watch the rest of this series and more great content from Ustad Norman Ali Khan.
0: Islam in baki mazahib se mukhtalif hai. Islam ne pehli cheez madad mangne ko nahi rakha. Islam ne pehli cheez kya rakhi hai? Ibadat. Iya ka naam to pehle hai. Aur ye koi chhota fark nahi, ye bahut azim fark hai.
2: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
3: Inspire FM.
2: Inspire 105.1 FM.
4: In Rabi al-Awwal, the month of the Prophet's birth, fasting carries deep spiritual importance because Mondays were cherished by the Messenger of Allah. The recommended days to observe these voluntary fasts are weekly, are on Monday and Thursday. Remember, being consistent for 66 days allows a habit to be built. Why not start now? Make the most of this time and may Allah accept your fast and du'as. Ameen.
5: Graceland Solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specialising in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Graceland Solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Graceland Solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS and begin your journey towards justice today.
6: Rishta Networking. Aaj ke is masroof aur gehma gehmi ke daur mein rishta dhoondna kisi muhim se kam nahi. Ye ek mushkil kaam hai. Lekin ghabraiye nahi. Inspire FM Rishta Networking ke saath milkar community ke is masle mein aapki madad ke liye apni khidmat pesh kar raha hai. 12 September baroz hafta din subah 11:30 se sapahar 4:30 baje tak Amberley Gardens Marquee, Gores Farm, High Road, Bedford, MK453AB mein صرف خواتین کی نشستوں کا اہتمام کیا گیا ہے جس میں آپ اپنے عزیز و اقارب کے لیے رشتہ ڈھونڈ سکیں گے ہمارے پاس محدود نشستیں باقی ہیں آج ہی رجسٹریشن کروائیے اور اس کار خیر میں حصہ لیجیے مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے www.rishta-networking.co.uk اپنے جیون ساتھی کی تلاش رشتہ نیٹورکنگ اور انسپائر ایف ایم کے ساتھ
7: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training and a new career or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click Join the Team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
8: Are you looking for a guaranteed return on investment? With Wanuma's ongoing Sadaqa Fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty, and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda, and more, a continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your akhirah at www.wanuma.org.uk.
9: Oh, Hillary. I was going to use newspaper display advertising.
10: But
9: it costs £10 per inch.
10: And that's too expensive.
9: Oh, indeed it is. I want to sell a 10-foot ladder.
10: Oh, Roger, invest in an ear-catching advertising campaign on this radio station instead. It's a great way to tell people about your products and service.
11: For details, click on inspirefm.org, then advertise.
12: From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30.
1: Last time on Akhri Mojza.
0: نحن عباد لك خاصة. تو یہ دعویٰ بہت بڑا ہو جاتا کیونکہ اس کا مطلب ہے میری زبان سے کبھی کوئی ایسا لفظ نہ نکلتا جو آپ کی عبادت کے سائے میں نہ ہو, میرے قدم کبھی کسی طرف نہ چلتے جو آپ کی عبادت کے تحت نہ ہو, میرے ہاتھوں سے کبھی کچھ نہ ہوتا, میری آنکھوں سے کبھی کچھ نہ ہوتا جو عبادت کا تقاضا نہ پورا کر رہے ہوں, کیونکہ میں ہر لمحے کیا ہوں, عبد ہوں, ये तो मेरे लिए मुमकिन है नहीं।

सैलाब आ रहा था तो सब शहर से निकल रहे थे क्योंकि ऐलान आ गया था कि सैलाब आ रहा है। एक साहब ने कहा, नहीं, मेरा रब मेरे लिए काफी है, तुम लोग जाओ, मैं अपने रब से मदद मांगूंगा। सारे निकल गए, एक बंदा रह गया गांव में। सैलाब आ रहा है, पानी बढ़ता चला चला गया, तो एक बंदा किश्ती से गुजर रहा था, उसकी छोटी सी उसने किश्ती खुद ही पट्ठों पट्ठों से बनाई उसने, और बना के कहता है, भाई आ जाओ मेरे पास, एक और की जगह है। नहीं, मेरा रब मुझे मेरी मदद करेगा, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। अब पानी ऊपर तक चला गया तो वो अब छत पे खड़ा हुआ है अकेला, पानी ऊपर उठ रहा है, ऊपर से हेलीकॉप्टर भी आ गया, उसने देख लिया, उसे ने कहा, आप आ जाएं ये पकड़ लें। नहीं, मेरा रब मेरी मदद करेगा। बंदा डूब गया, फरिश्ते पकड़ रहे हैं, वो कहते हैं, मेरे रब ने मेरी मदद नहीं की। तो फरिश्ते कहते हैं, गधे, हमने पहले पूरे गांव से बुलवाया, फिर हमने ये बंदा भेजा, फिर उसके बाद हेलीकॉप्टर भेजा। बात क्या कही जा रही है उस लतीफे में, वो ये है कि हमें मदद कबूल करनी पड़ती है जब अल्लाह ताला की तरफ से आती है, अपनी कोशिश भी करनी पड़ती है। हम सिर्फ यही नहीं कह सकते बस अल्लाह की तरफ से मदद आएगी तो देखा जाएगा, जब तक वो नहीं आएगी अब कुछ भी नहीं हो सकता। और ये कभी कभी हम इस एक्सट्रीम पे चले जाते हैं ना, क्योंकि बात तो ठीक है, अल कादिर फिल हकीका लैसा वला का कादिर फिल हकीका इल्लल्लाह, असल में कुदरत सिर्फ अल्लाह की है। मैं यहाँ कड़ा चल रहा हूँ लेकिन मेरे चलने की सलाहियत अल्लाह ताला की तरफ से ही आ रही है। तो आप बढ़ चढ़ के अगर आप खुतबा दे दें कि हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, अल्लाह ताला का कुन जब तक ना हो कुछ भी नहीं हो सकता, अब ये कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, आप बार बार कहते रहो तो इंसान के दिमाग में क्या बात आ जाएगी, वाकई कुछ नहीं हो सकता, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मेरी सूरत हाल बिल्कुल नहीं बदल सकती, बस अब बस अल्लाह ही करेगा, अब अल्लाह की मदद मांगी जा सकती है। और ये मैं बात ख़ास इसलिए दोहरा रहा हूँ कि जब मैं पहली दफ़ा पाकिस्तान आया था इस टूर में कुछ महीने पहले, तो सबसे आम सवाल मुझे ये मिला था, अल्लाह ताला मेरी दुआएं क्यों नहीं कबूल कर रहे, अल्लाह ताला से मैंने बहुत मदद मांगी है, मदद आ नहीं रही। मैंने, आपने क्या किया है, दुआ, और क्या किया, और ज़्यादा दुआ, रोज़े भी रखे हैं मैंने। आपने खुद कुछ करना नहीं है, बस मदद मांगनी है, और ये किस चीज की मुखालफत है, इयाका नस्ताईन की, इयाका नस्ताईन की। अच्छा, आओ, अगर इसकी तरतीब बदल दी जाती, इयाका नस्ताईन हुआ इयाका नाबुदु, तो क्या फर्क पड़ना था, थोड़ा सोचते हैं इस बारे में। असल में पहली बात तो यह है कि हमारी इस ज़िंदगी का बुनियादी मकसद और जो असल नतीजा था पहली तीन आयात का, वो मदद मांगना नहीं था। उसका नतीजा पहला क्या था, मुझे इस रिश्ते की जो मुतालबे हैं ना वो पूरे करने हैं। तो उस रिश्ते की बुनियाद क्या है, इस्तियाना नहीं है, मदद मांगना नहीं है, उस रिश्ते की बुनियाद क्या है, इबादत। और यही एक बुनियादी फ़र्क है हमारे मज़हब में और बाकी तमाम मजाहब में, ये बात भी समझ लेना, बाकी तमाम मजाहब में असल बुनियाद है खुदा मेरी मदद करेगा, ये सारे खुदा मेरी मदद करेंगे, ये किसी ना किसी तरह हमारी किसी ना किसी किसी मामले में, पैसे के मामले में, फैमिली के मामले में, जंग के मामले में, ये हमारी मदद करेंगे, हम ये फलाने चढ़ावे चढ़ाएंगे हमारी मदद होगी, हम ये बातें करेंगे, ये पूजा करेंगे हमारी मदद होगी, मदद मदद मदद मदद और मदद। असल मकसद मजहब का, बाकी तमाम मजाहब का क्या है, कि कहीं ना कहीं से आसमानी मदद आएगी, ये असल मकसद है। क्यों दुआ कर रहे हैं, क्यों पूजा कर रहे हैं, क्यों जो है चर्च जा रहे हैं, मदद के लिए। और मैं इस बात को गहराई में समझना चाह रहा था कि यह वाकई ऐसा है कि नहीं, क्योंकि इस्लाम इन बाकी मजाहब से मुख्तलिफ है। इस्लाम ने पहली चीज मदद मांगने को नहीं रखा, इस्लाम ने पहली चीज क्या रखी है, इबादत, इयाका नाबुदु पहले है। और ये कोई छोटा फर्क नहीं, ये बहुत अजीम फर्क है। इस फर्क को अगर आप गौर करो ना, इस फर्क पे आपको पता चलेगा कि इस्लाम किसी और मजहब की तरह नहीं, किसी और मजहब की तरह नहीं। क्यों, मैं गया था, क्योंकि मैं टेक्सास में रहता हूँ, मैं न्यूयॉर्क से टेक्सास मूव हुआ, टेक्सास में एक साहब हैं जोएल ऑस्टिन बहुत बड़े ईसाइत के जो हैं दाई हैं,

0: उनके चर्च में तकरीबन हर संडे को 50,000 से 1 लाख लोग अटेंड करते हैं हर संडे को। ह्यूस्टन में होते हैं, मैं डैलस में होता हूँ, 3-3.5 घंटे की ड्राइव है वहाँ से। लेकिन कोई यहाँ अभी से 6-7 साल पहले क्रिसमस ईव पे उनका एक क्रिसमस स्पेशल हो रहा था डैलस में, क्रिसमस स्पेशल, जिस तरह हमारे यहाँ ईद का खुतबा होता है ना, उनका क्रिसमस स्पेशल। अब वो बंदा इतना पॉपुलर कि वो किसी चर्च में जाके कर नहीं सकता क्योंकि इतने लोग आना चाह रहे हैं। तो उसने बुक किया अमेरिकन एयरलाइन स्टेडियम, जहाँ पे बास्केटबॉल गेम्स और बड़े बड़े मैचेस वगैरह होते हैं ना, उसने वो पूरा स्टेडियम बुक किया डैलस का। मैंने भी टिकट लिया, मैं भी गया देखने क्या होता है, मैं भी देखूँ क्या करते क्या हैं ये लोग। अब मैं वहाँ गया, 3 घंटे का उसका प्रोग्राम था, और उसने अपनी सास को भी बुलाया हुआ था, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। बीवी भी उसके साथ थी, भाई भी उसके साथ था, और बड़े मज़े की बातें की उन्होंने। लेकिन पूरी बात का तो वो खुलासा भी आपको नहीं बताऊंगा, एक बात बताऊंगा। वादे क्या कर रहा था, इस साल तुम्हारी सारी ख्वाहिशें जीसस पूरी कर देगा, क्या चाहिए तुम्हें, वो जो जिस डिवोर्स में तुम फंसे हुए वो केस इस साल खत्म हो जाएगा, वो जो तुम्हें जॉब नहीं मिल रही ना, जो प्रमोशन नहीं मिल रही, वो इस साल तुम्हें मिल जाएगी। और वो एक एक चीज को लिस्ट करके ना, इस साल जीसस ने फैसला किया है कि तुम्हारी ये ख्वाहिशें पूरी हो जाएगी। और हजारों लोग बैठे हुए, मैं ऊपर ब्लीच सबसे चीप टिकट दिए थे मैंने, वो पूरे ऊपर कोने में मेरे इनके जो सारे बैठे ना, वो कह रहे यस सर, यप यस। वो क्या सेल कर रहा है उन लोगों को कि तुम्हारी सारी दुआएं क्या होंगी, पूरी हो जाएंगी, सारी ख्वाहिशें सारी दुआएं कबूल हो जाएंगी। एक दफा उसने 3 घंटे में एक दफा इस बात का जिक्र नहीं किया कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, इस खुदा की, जिस खुदा को हम मानते हैं उसकी इबादत। ना ना ना ना ना, वो तो ठीक है, बस खुदा से मांगो मांगो और मांगो, और वो देगा और वो देगा और वो देगा। अब ठीक है, अल्लाह ताला से मांगना हमारे दीन में, अल्लाह ताला से दुआ करना, अल्लाह ताला से मुतालबा करना हमारे दीन का हिस्सा है कि नहीं? हाँ, लेकिन वो इयाका नस्तईन के तहत है या इयाका नाबुदु के तहत है? इयाका नाबुदु के तहत है, यानी आप पहला पहले अपना काम करो। और इयाका नस्तईन में भी दो हिस्से हैं, मैंने दो हिस्से समझाए थे ना। पहला हिस्सा क्या था, अपनी कोशिश, और फिर, और ये जो कोशिश और ये जो आप मुतालबा कर रहे हो वो इबादत के तहत है, यानी मैं अल्लाह ताला की इबादत करते हुए अब मेरी जिंदगी के मकसद और उसके जो गोल्स हैं, जो मेरे अहदाफ हैं, जिन चीज़ों के पीछे मैं भाग रहा हूँ क्योंकि मैं अल्लाह ताला का अब्द बनना चाह रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा, अब उन गोल्स पे भी असर पड़ा। जिन चीज़ों के पीछे मैं पहले भाग रहा था इयाका नअबुदु से पहले, जिन चीज़ों के पीछे भाग रहा था, अब उन चीज़ों के पीछे नहीं भाग रहा, किसी और चीज़ की तरफ दौड़ रहा हूँ। अब उस चीज़ की तरफ दौड़ रहा हूँ तो मुझे मदद की ज़रूरत है, अब मैं अल्लाह ताला से मदद मांगूंगा। तो मेरी दुआओं की असल नेचर ही बदल गई पूरी तरह से। और अब हम इस मोड़ पर आ गए हैं मुसलमान, कुरान से इतने दूर कि अब हमने अपना अल्लाह ताला से जो रिश्ता बनाया हुआ ना इस वक्त अक्सरियत ने हमारी, उसमें, और जो ईसाई ने जीसस के साथ रिश्ता बनाया हुआ है, जो हिंदू ने अपने मंदिर में रिश्ता बनाया हुआ है अपने खुदाओं से, उसमें तकरीबन कोई फर्क नहीं रहा, क्योंकि हम बस अब एक ख्वाहिशात का मजहब है। अल्लाह ताला मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं कर रहा, मेरी मुश्किलें आसान नहीं कर रहा, मैं तो इतनी नमाजें पढ़ रहा हूँ, मैं तो इतनी नमाजें पढ़ रही हूँ, मैं तो उम्रा भी किया था, मैं तो फलाने रोजे नफली रोजे भी रखे थे, मैं तो सदका भी दिया था, फिर भी कोई बात नहीं मान रहा। इस सारे में क्या है, असल बुनियाद क्या हो गई है, किसी ना किसी तरह मेरी ख्वाहिशात पूरी हो जाए। फातिहा का मकसद ख्वाहिशात नहीं है, फातिहा का मकसद है मकसद, इंसान की जिंदगी में मकसद डालना। एक दफा मकसद आ जाए ना, तो अब वो मदद किस चीज में मांगेगा, या अल्लाह जिस मकसद के लिए मुझे बनाया है ना, उस मकसद को पूरा करने में भी मुझे आपकी क्या चाहिए, मदद चाहिए। इयाका नअबुदु असल में मकसद है, और इयाका नस्तईन उस मकसद को पूरा करने के लिए हम अल्लाह ताला से मदद मांग रहे हैं। इसकी एक और मिसाल, आखिरी मिसाल आप समझ लें ताकि ये बात जहन में बैठ जाए। आप सफ़र पे जा रहे हो, आप चलो आप फ़र्ज़ करो आप पिंडी से आप लाहौर जा रहे हो, ठीक है, आप गाड़ी पे सफ़र पे निकले हो, रोड पे निकले हो, रस्ते में आपको गाड़ी में पेट्रोल कम हो गया, आपको रुकना पड़ेगा, है कि नहीं? आप रुकोगे, मदद के लिए रुकोगे ना, गाड़ी को मदद की ज़रूरत है। आपको भूख लगी है, आप खाने के लिए रुकोगे, आपके जिस्म को मदद की जरूरत है ना, रुकोगे हमेशा के लिए, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए, क्यों? क्योंकि वो आपका मकसद नहीं है। आपका मकसद क्या था? लाहौर। तो आपको यहां रुक के थोड़ी मदद लेके फिर आगे चलना है, और रुकने का भी एक मकसद था ताकि बाकी सफर पूरा हो सके। समझ में आ रही है बात? हमने क्या किया है, वो जो स्टॉप्स आते हैं ना जिंदगी में, वही मकसद बन गए हैं। या अल्लाह और खिला दे, और खिला दे, और पेट्रोल डाल दे, और पेट्रोल डाल दे। किस लिए डाल दो? बस पेट्रोल बड़ा अच्छा लगता है मुझे। उधर ही अब आपका मकसद क्या बन गया? इस पेट्रोल स्टेशन से अगले पेट्रोल स्टेशन तक जाना, बस। और कभी कभी कहना है वो पुराना पेट्रोल स्टेशन अच्छा था, वहीं वापस चलते हैं, या अल्लाह वहां दोबारा वापस पहुंचा से। ये मिसाल आप समझ लें कि हम एक सफर पर हैं, और उस सफर पर हमने अल्लाह ताला से मदद मांगी है। क्योंकि जब आप लंबे सफर पर जा रहे हो तो आप थक जाते हो, तो फिर आपको मदद की जरूरत होती है। इयाका नअबुदु व इयाका नस्तईन। इसमें एक और बड़ी प्यारी बात यह है कि इयाका नअबुदु असल में हमारी कमिटमेंट है अल्लाह ताला के साथ, और इयाका नस्तईन में हमारी जरूरियात पूरी हो रही हैं। अल्लाह का मुतालबा किस में पूरा हो रहा है? इयाका नअबुदु। और हमारा मुतालबा किस में पूरा हो रहा है? इयाका नस्तईन। जो चीज़ अल्लाह के लिए है वो पहले होनी चाहिए, जो हमारे लिए है वो बाद में होनी चाहिए। तो इयाका नअबुदु पहले, इयाका नस्तईन बाद में। इयाका नअबुदु इयाका नस्तईन। फिर एक और बहुत ही खूबसूरत बारीक सी चीज़ इस आयत में यह है कि इयाका दो दफ़ा जिक्र करना लाजमी नहीं था। इयाका नअबुदु व नस्तईन अरबी के कवायद के एतबार से सही है। अगर आप कहो इयाका नअबुदु व नस्तईन, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और मदद मांगते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन कुरान ने अपनी हिकमत में इयाका का दो दफ़ा जिक्र किया। इसको इतनाब कहते हैं। इतनाब कहते हैं अरबी में जो बात बार बार नहीं की कहने की ज़रूरत थी उसको दो दफ़ा कहना, या दो से ज़्यादा मरतबा भी कहना। इतनाब स्टाइल को इतनाब कहा जाता है। तो कुरान ने यहाँ पर इतनाब का इस्तेमाल किया, इयाका नअबुदु इयाका नस्तईन। इस इतनाब का क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि कुछ मामलात में हमें अल्लाह ताला की इबादत में ही मदद चाहिए होती है, और कुछ मामलात ज़ाती भी होते हैं जिसका इबादत से ताल्लुक नहीं होता। कभी कब होता भी है, बुनियादी तौर पर इबादत से ताल्लुक होता है, लेकिन बहुत सारी ज़िंदगी में सिचुएशंस आती हैं जिनका इबादत से ताल्लुक नहीं है, फिर भी अल्लाह की मदद चाहिए। तो अगर कहा होता ना इयाका नअबुदु व नस्तईन, तो सिर्फ एक ही तरह के मामले में हम अल्लाह ताला की मदद मांगते हैं। किस तरह के मामलात में? इबादत से मुतालिक मामलात में, सेहत से मुतालिक मामलात में नहीं, फैमिली से मुतालिक मामलात में नहीं, पैसों से मुतालिक मामलात में नहीं, अपनी डिप्रेशन के मामलात में नहीं, अपनी एंग्जाइटी के मामलात में नहीं। लेकिन अब एक जोड़ भी बन गया और एक अलहदगी भी हो गई, यानी दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं और दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, और उन दोनों की गुंजाइश अल्लाह ताला ने हमें दे दी। इयाका नअबुदु व इयाका नस्तईन। अच्छा,
1: Subscribe now to the Beginner YouTube channel to watch the rest of this series and more great content from Ustad Noorman Ali Khan.
0: तो जब आप किसी को बड़ी नफरत से हिदायत देने की कोशिश करते हैं, ये लोग तो जहन्नमी है, जहन्नमी, इनको देखो काफिर हैं, ये काफिर, ये फलाने ऐसे हैं, ये फलाने मुशरिक हैं, ये फलाने उधर, जिस जो अल्फाज आप इस्तेमाल कर रहे हो, ये हिदना की रूह से सही है कि नहीं?